हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: 99.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। 6 बजे ही अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने

0: प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मानव जीवन यूं तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु संसार रूपी भवसागर में हम सब एक नाव की भांत हैं। सागर की लहर जिस ओर ले जाए उधर ही चले जाना है। ऐसे में ईश्वर ही एक संबल और सहारा है, उसी के हाथ जीवन की पतवार है, वही हम सबका खोइया, वही करतार है।

हे दीन बंधु दीनानाथ, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं, हमारे अंतर्यामी हैं। आप दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। कहते हैं कि आपकी शरण में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम।

दो दिन का ये जीवन प्राणी क्षणभंगुर तेरी काया, रमा हुआ है मन क्यों तेरा, झूठी है इस जग की माया, झूठी काया झूठी माया, झूठा जग एक सपना है, कर ले सुमिरन कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम ही अपना है।

0: सुमिरन कर ले कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम सुखदाता है, कृष्ण नाम में रमने वाला भव सागर तर जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने चंद्रु आत्मा, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। चिंतन, इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं काका साहेब कालिलकर के विचार।
1: अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में गरिमा में स्थान बनाने वाले व्यक्तित्व चिर स्मरणीय होते हैं। काका कालिलकर उन्हीं महिमामयी विभूतियों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते हुए मानवता के उन्नयन का रचनात्मक प्रयास किया। आज भी संपदा हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सृष्टि के लिए सादर स्मरण किए जाते हैं। महात्मा गांधी के संपर्क में रहने वाले काका कालिलकर पराधीनता को अभिशाप मानते थे। समय की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। फलस्वरूप उन्हें कई बार कारागार की यात्रा करनी पड़ी। प्रदर्शन से परे रहकर समर्पित भाव से काम करने वालों में काका साहब का नाम सम्मान से लिया जाता है। बापूजी के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी कस्तूरबा जी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी काका साहब पर पड़ा। इसीलिए काका कालिलकर हमेशा मानते रहे कि निष्ठा, सदाचार और लगन के द्वारा छोटे से छोटा मानव भी अपनी शक्ति का मनोनुकूल विस्तार कर सकता है। और इसीलिए एक स्थान पर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो कुछ साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तर होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान मनुष्य अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क का काका साहब पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हिंदी भाषा के प्रचार को आप राष्ट्रीय कार्यक्रम का अंग मानते थे। दक्षिण भारतीय प्रचार सभा के सन 1938 के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। काका साहब ने जीवन पर्यंत हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की सेवा की। जीवन साहित्य, जीवन काव्य, जीवन लीला, लोक माता, बापू की झांकियां और सर्वोदय आदि श्रेष्ठ अमर कृतियां हैं जो पाठकों में श्रेष्ठ मानव संस्कारों का समावेश करती हैं। प्रगतिशील विचारों के होते हुए भी काका कालिलकर भारतीय संस्कृति के एक निष्ठ उपासक थे। उपनिषद आदि भारतीय संस्कृत साहित्य का अध्ययन मनन करने वाले काका साहब ने अपनी कृतियों में अनेक दार्शनिक विषयों को बड़े सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया। मंगल मंदिर खोलो, इस रचना में वे जीवन और मरण के संबंध में लिखते हैं कि जीवन और मरण विराट जीवन के ही दो पहलू हैं। परमात्मा की ये दो विभूतियां हैं। इनमें जीवन मनुष्य की कठोर कसौटी है, जबकि मरण उस क्षमावान परम करुणिक की दया है। मृत्यु के समय मनुष्य को जो वेदनाएं होती हैं वे मृत्यु के कारण नहीं होती। मृत्यु में तो नींद की जितनी ही मिठास और मधुरता है, जो वेदनाएं होती हैं वे जीवन के कारण होती हैं, क्योंकि जीवन अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। इसी संदर्भ में उनका निष्कर्ष है कि मरण का डर और जीने का हौसला असल में मरणोत्तर स्थिति के बारे में हमारे अज्ञान के कारण है। परहित, पर सेवा और मानव प्रेम के पुजारी काका साहब की मान्यता थी कि मोहवश होकर मनुष्य को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अपने बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे ही हमारी जायदाद के उत्तराधिकारी हैं, यह हमारे प्रेम के अधिकारी हैं। जिस विराट समाज में हम रहते हैं, हम जीते हैं और जिसके पुरुषार्थ से हमने लाभ उठाया है, वे सब हमारे प्रेम और सेवा के मुख्य अधिकारी हैं।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे काका साहेब कालिलकर के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। रात 8:00 हम प्रसारित करेंगे संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा, और रात 10:00 आप सुन सकेंगे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:45 हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता। विषय रहेगा कृषि लागत कम कैसे करें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी रूट कैनाल उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अंकित गर्ग। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज शुक्रवार है। आज के दिन 9:25 पर आप सुनते हैं गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वचन और विचार के संबंध में गांधी जी के विचार। पूर्वाहन 11:00 कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुमताज पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कलम का सिपाही महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी चर्चा प्रकृति की रक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता। इसी कार्यक्रम में सुश्री अर्षा राय निगम का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। क्रम रहेगा मेरी पहचान, फैशन ब्यूटी और रेसिपी टाइम। आज शुक्रवार है। दोपहर 3:00 उर्दू कार्यक्रम अंजुमन नश किया जाएगा। इसमें आज आप समाप्त करेंगे मुशायरा। शौराय हजरात होंगे जनाब मुश्ताक अहमद अंबर, डॉक्टर मुजीबुर रहमान शहजर, जनाब भरतदीप माथुर और मोहम्मद जाकिर शमसी शम्स। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा जल संचयन विधियां। क्रम रहेगा आज का सवाल और नई पहल। ग्रामीणों कार्यक्रम में 6:00 हमारे किसान भाई वार्ता सुनेंगे घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा। चर्चा का विषय रहेगा फसल चक्र की उपयोगिता। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी प्रसारित किए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 हम आपको सुनवाएंगे एक कानूनी वार्ता। इसका विषय रहेगा श्रम कानूनों से श्रमिकों का कल्याण। वार्ताकार होंगे श्री शशि कुमार उपाध्याय। चर्चा करेंगे, विषय रहेगा हमारे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर डॉक्टर भारती पारिजात की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा प्रेमचंद की रचनाओं में आधुनिकता के स्वर। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के

आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का आज का ये संगीतबद्ध प्रसंग।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत संयुक्त थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता। विषय है कृषि लागत कम कैसे करें।
1: अपने देश में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति वर्ष 1966-67 से आई और हरित क्रांति युग में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। फलस्वरूप खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। आज हम 212 मिलियन टन से ऊपर खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। हरित क्रांति की सफल कहानी के पीछे जो राज है वह है अधिक उपज देने वाली किस्में, सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग, रसायन उर्वरकों एवं कृषि रसायनों का अत्यधिक प्रयोग जिनसे उत्पादन बढ़ा। निश्चय ही अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग ने खेती को उर्वरक आधारित बना दिया है। भूमि जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ आदि ने भूमि की दशा बिगाड़ी है। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हुआ मानव पर रसायन के कुप्रभाव पड़ने लगे, पर्यावरण बिगड़ा आदि दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। साथ ही कृषि लागत मद जैसे उर्वरक, सिंचाई जल, बीज आदि महंगे होते चले जा रहे हैं। जहां कृषकों को खेती में अधिक लागत लगानी पड़ती है वहीं तुलनात्मक खर्च एवं मुनाफा अनुपात घटता जा रहा है जो निश्चय ही एक चिंतनीय विषय है। अतः इन विषम परिस्थितियों में हमें चाहिए कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई कृषि तकनीकों एवं स्वदेशी अनुभवों को अपनाकर भविष्य में खेती की जाए ताकि उनके प्रयोग से बगैर उत्पादन में कटौती के कृषि लागत में कमी की जा सके। कुछ प्रमुख नई विकसित कृषि तकनीकें इस प्रकार हैं। समय से बुवाई एवं उचित पौध संख्या से अधिक उपज ली जा सकती है। ये बगैर खर्च के मद हैं। कहावत है आगिल खेती भागे जाए, पाछिल खेती पाछे जाए। अतः किसी भी फसल की समय से बुवाई कर दी जाए तो उस फसल से 50% सफलता मिलना सुनिश्चित है। फसलों में विशेषकर गेहूं में क्रिस क्रॉस दोनों तरफ से धन के निशान पर बुवाई विधि से खरपतवारों की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। अतः खरपतवारों द्वारा फसल से ली जाने वाली चुंगी जैसे खाद, पानी एवं निकाई गुड़ाई में लगी मजदूरी में काफ़ी बचत की जा सकती है। दीर्घकालीन फसल चक्र में बदलाव से मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनी रहती है और फसलों में कीट रोग भी कम लगते हैं। अर्थात 100 रोगों का एक इलाज फसल चक्र में फेर बदलाव। प्रायः कृषक बगैर उचित फसल चक्र अपनाए खेती करते रहते हैं जो गलत है। अतः कृषकों को ऐसे फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिनमें दलहनी फसल अवश्य हो। इससे भूमि मजबूत होती है और उर्वरक की बचत भी होती है। फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं राइजोबियम कल्चर से हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। अर्थात FRI का सिद्धांत अपनाया जाए। ऐसा करने से फसलों की लागत में काफ़ी कमी की जा सकती है। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर, दलहनों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर आदि में, एजोटोवैक्टर गेहूं, सरसों, आलू आदि में, एजो स्पाइरिलम बाजरा, ज्वार, मक्का में आदि द्वारा 2 से 2.5 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज द्वारा बीज उपचार से 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर अर्थात 1 कट्टा यूरिया लगभग की सीधी बचत की जा सकती है और उपज में 10 से 15% की वृद्धि भी होती है। PSV यानी फास्फेट कल्चर के इतनी ही मात्रा में प्रयोग से फास्फोरस तत्व की 50% बचत संभव है। ये जैव उर्वरक मात्र 7 से 8 रुपये प्रति पैकेट यानी 250 ग्राम वजन के की दर से उत्तर प्रदेश

0: के कृषि विभाग इफ्को नेफेड द्वारा उपलब्ध हैं। ट्राइकोडर्मा फफूंदी कल्चर द्वारा फसलों में लगने वाली फफूंद पर नियंत्रण से कम लागत में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, जिसे बीजोपचार 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के साथ, मृदा उपचार में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 100 से 150 किलोग्राम सड़ी कंपोस्ट, पर्णीय छिड़काव में 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर, तथा सब्जियों धान आदि की पौध की जड़ों को 250 ग्राम 1 पैकेट कल्चर प्रति 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट तक डुबोकर करना चाहिए। ऐसा करने से फफूंद रोग नहीं लगेंगे। 0.5% जिंक सल्फेट 21% जस्ता के पत्तियों पर घोल छिड़काव से मात्र 10% खर्च में तुलनात्मक 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयोग के प्रायः सभी फसलों में, विशेषकर तिलहनों में जैसे राई, सरसों, सूरजमुखी, तिल आदि में 10 से 15% उपज आसानी से बढ़ाई जा सकती है। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं क्रिटिकल स्टेजेस पर सिंचाई देने से कम सिंचाई जल से अधिक उपज ली जा सकती है। वर्तमान में सिंचाई जल उपलब्धता की एक समस्या है। ऐसा करने से जल की काफ़ी बचत कर खेती को सस्ता बनाया जा सकेगा। फुब्बारी या स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद कर टपक सिंचाई अपनानी चाहिए ताकि जल की काफ़ी बचत की जा सके। सरकार द्वारा ऐसी सिंचाई हेतु अनुदान भी दिया जाता है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए। धान यानी अन्न वाली फसलों में 4:2:1, दलहनों में 1:2:1, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तत्व दिए जाएं। उर्वरकों के सही प्रयोग हेतु मिट्टी की जांच के आधार पर ही दें। उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु हल्की भूमि में नत्रजन 2 से 3 बार में, फास्फोरस व पोटास तत्वों की पूरी मात्रा 1 ही बार में, बीज बुवाई से पूर्व कूड़ों में बीज के 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दें। प्रायः कृषक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, अतः इस विधि से उर्वरक दें तो उर्वरकों की मात्रा में काफ़ी बचत की जा सकती है। एकीकृत पोषण प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, एकीकृत सिंचाई प्रबंधन एवं एकीकृत कीट व्याधि प्रबंधन से खाद, सिंचाई जल, खरपतवार नियंत्रण पर बगैर उपज के कटौती के कृषि लागत को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। जैव कीटनाशी, बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम का तेल, तंबाकू, रीठा, गेंदा, तुलसी, मेंथा के अर्क के प्रयोग से कम खर्च में सफल कीट नियंत्रण कर रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। नीम का तेल 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर कीट नियंत्रण हेतु फसलों पर छिड़कें। गौमूत्र एवं नीम की पत्तियों का अनुपात 4:1 में बने कीटनाशी द्वारा कीट नियंत्रण उपयोगी है, जिस पर न के बराबर खर्च आता है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। छाछ या मट्ठी के प्रयोग के लिए 10 से 12 लीटर मट्ठा जो खट्टा हो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर सभी फसलों में जैसे कपास, सब्जियां या अन्य फसलों में फूल आने के बाद 2 से 3 बार छिड़काव करने से कीट नियंत्रण के साथ साथ उपज में वृद्धि, उत्पाद जैसे फल बीज की गुणवत्ता में सुधार आता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता, कृषि लागत कम कैसे करें। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम्। राज्यसभया एतत् विधेयकम् ह्यः पारितम्, लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि

0: सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सहअध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the

0: और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अंकित गर्ग को। तो डॉक्टर गर्ग, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है।
1: रूट कनाल ट्रीटमेंट को बताने से पहले मैं आप लोगों को दांतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दांतों में देखिए दो परतें रहती हैं और उसके बाद दांत के अंदर हमारी नस रहती है। जब हमारे दांत पे कीड़ा लगना शुरू होता है तो वो पहली परत से शुरू होता है और धीरे धीरे वो नीचे के नस की तरफ जाता है। जब हमारे दांत में नस तक कीड़ा पहुँच जाता है तो हमारे दांत में दर्द शुरू हो जाता है। उस स्टेज पे हमें रूट कनाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सब जानते हैं कि दांत को निकालना कोई दांत का इलाज करना नहीं है, दांत को हम बचा सकते हैं इस नस के इलाज के द्वारा से। रूट कनाल को हिंदी में नस का इलाज बोला जाता है। इसमें हम लोग जो दांत के अंदर नस है उसको हम नस को निकाल के उसके अंदर एक गट्टा परचा मटेरियल होता है उसको हम भर देते हैं, जिससे कि हम उस दांत को बचा सकते हैं, उसकी सेवाएं ले सकते हैं चबाने में।
0: तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती?
1: नहीं, दांत को हम लोग बिना निकाले ही रूट कनाल के द्वारा उस दांत को बचा सकते हैं, जो कि उस पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा चबाने में, बात करने में, लाइफ लॉन्ग।
0: डॉक्टर गर्ग, आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि जिन लोगों के दांत, विशेष रूप से जो पीछे की ओर दाढ़ होती है जिससे चबाते हैं, तो उनमें अक्सर गड्ढे से हो जाते हैं या कालापन दिखाई देने लगता है, वो क्या होता है?
1: देखिए, जो दाढ़ों में हमें कालापन दिखता है वो कीड़ा है। कीड़ा कोई जानवर नहीं है जिसके हाथ पैर हैं दांत में अंदर, वो बैक्टीरिया से हैं जिससे कि दांत की ऊपर की परतें खराब होती चली जाती हैं, और उस पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो उसकी नस तक वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँचने के बाद हमें दांत को या तो निकालना पड़ता है या फिर उसको बचाने के लिए रूट कनाल करना पड़ता है।
0: आपके कहने का अर्थ यह है कि जो दांत की सबसे ऊपर की परत जो होती है, जो एनामिल जिसको बोलते हैं, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल जी। पहले देखिए इनेमल में इन्फेक्शन पहुंचता है, क्योंकि जो हमारे मुंह में दांत दिख रहा है वो सिर्फ इनेमल पोर्शन ही दिखता है। उसके बाद जब पहली परत खराब हो जाएगी, उसको जिसको इनेमल बोलते हैं, उसके बाद सेकेंड लेयर को हम डेंटिन बोलते हैं, वो खराब होनी शुरू होती है। पर हमें दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता उसमें, क्योंकि कीड़ा जो है उसकी नस से दूर होता है जब, और जैसे जैसे वो नस के करीब पहुंचता है तो हमें दर्द महसूस होने लग जाता है दांत में उस।
0: आपके कहने का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति को ठंडा लगना या गर्म लगना या किसी चीज को चबाने में तकलीफ होना दांत
1: जी
0: में, तो ये इसका लक्षण है।
1: देखिए, अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो वो पहले की दो परतों में जब कीड़ा लगा है तो भी लग सकता है,
0: जी
1: पर अगर दांत में दर्द हो चुका है तो हमें रूट कनाल की ही आवश्यकता है उस दांत। अगर किसी दांत में दर्द हो गया तो समझिए कि उसमें रूट कनाल ही करना पड़ेगा या फिर उस दांत को निकालना पड़ेगा।
0: अच्छा, एक हमारे श्रोताओं की एक जिज्ञासा रहती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या बहुत ज्यादा दर्द होता है या कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग दांतों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दें।
1: देखिए, आजकल का युग है एक मॉडर्न डेंटिस्ट्री का। हम डेंटिस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं दांतों में। आज के युग में किसी भी दांतों के इलाज में बिल्कुल दर्द नहीं होता, उसके लिए सारी चीज़ें हम लोगों के पास मशीनरीज वगैरह रहती हैं, जिससे कि डेंटल ट्रीटमेंट आज की तारीख में बिल्कुल बिल्कुल पेनलेस है, किसी भी इलाज में बिल्कुल दर्द नहीं रहता।
0: तो निश्चित रूप से आपकी इस जानकारी से हमारे उन श्रोताओं को बेहद लाभ मिलेगा जो दांत की परेशानी से, दांत के दर्द से परेशान हैं और अपना दांत निकलवाना भी नहीं चाहते, और वे चाहते हैं कि उनके दांत सही सलामत रहें, बचे रहें और उनका दर्द भी समाप्त हो जाए। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आपकी इस बात से ये जाहिर होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बेहतर तरीका है, एक बेहतर इलाज है।
1: जी, दांत बचाने का बहुत बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छा तरीका माना जाता है ये रूट कनाल।
0: तो डॉक्टर गर्ग, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लघु भेंट वार्ता रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डॉक्टर अंकित गर्ग से भेंट कर रहे थे नीरज जैन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं समवेश्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेत स्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। देशभक्ति परक गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को ही पारित कर दिया था।

0: विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
2: विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने कल ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने 29 जुलाई को ही इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचार धारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक बड़े श्रेष्ठ भारत के लिए सबूत वंदे मातरम चाहिए।
0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये युवा देश के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के जनभवन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और अन्य तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर जिले में 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की।
5: मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा

0: हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
1: श्रावण मास कल से शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली में बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कल समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत की।
2: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो व्यवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
1: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही यूपी रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
3: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5,000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान हुआ है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: बागपत जिले के छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में कल शाम एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे के प्रशासन की मदद से मलबे को हटाकर 2 शवों को बाहर निकाला गया, जबकि गंभीर तौर पर घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेफर होने के बाद इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

जगह तक ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी

0: विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद, मनोरंजक, खूबसूरत कार्यक्रम। 7:32:30 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा बरसात के मौसम का भीगा भीगा नमस्कार। श्रोताओं, भीगने की हम बात कर रहे हैं अब, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी बंद हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। और कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि बारिश बिल्कुल बंद है, मौसम साफ है और चलिए अपने काम से घर से निकल चलते हैं, और थोड़ी दूर गए और पता लगा कि तुरंत आसमान में बादल आ गए और बरसने लगे, कहीं छुपने की जगह भी नहीं, भीग गए। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। कपड़े हैं तो कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो जहां आपको जाना था वहां आप पहुंचिए और अपना काम कीजिए। लेकिन जब हम किसी काम से बाहर जाएं और बरसात का मौसम है, हम ये जानते हैं कि बरसात कभी भी हो सकती है, कभी भी हमको भिगो सकती है, तो थोड़ी सी कुछ सावधानियां अगर हम एहतियात के तौर पर करके घर से चलें तो बरसात के मौसम में थोड़ा सा हम बच सकते हैं, भीगने से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल रेनकोट चल रहे हैं तो हम अपने साथ वो रखें, और अगर वो नहीं है तो कम से कम एक छाता, छोटे छाते आते हैं आजकल, वो अपने बैग में हम रख सकते हैं। अगर हम टू व्हीलर पर हैं, अपने साइकिल से हैं या मोटरसाइकिल पर हैं, तो एक छोटा सा छाता भी अपने साथ रख सकते हैं, और कहीं अगर बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, तो हम कहीं खड़े होकर छाता लगाकर खड़े हो सकते हैं, तो भीगने से बच सकते हैं। बारिश बंद होने के बाद वहां से हम अपने गंतव्य की ओर चल सकते हैं। परेशानी तब और ज़्यादा हो जाती है जब हमारे पास छाता भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बारिश बहुत देर तक नहीं रुक रही है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, उमड़ते घुमड़ते बादल, बिजली चमक रही है, तब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें सबसे पहले तो कहीं ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पक्की जगह हो या कोई छत हो, उसके नीचे हमें खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसे में कभी भी किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े मत होइए, और अगर हो सके तो अपने पैरों के नीचे कोई ऐसी चीज रख लीजिए जो विद्युत की कुचालक हो, यानी जिसमें विद्युत का संचालन न होता हो। जैसे लकड़ी का पट्टा रख सकते हैं, प्लास्टिक या पॉलीथिन की कोई चीज हो उसे हम नीचे रख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि हम जहां हों वो जगह सूखी हो। तो सूखी तभी हो सकती है जब हम किसी ऐसी जगह पर होंगे जहां हमारे सर के ऊपर कोई छत होगी या शेड होगा, तभी हम बच सकेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बरसात में जब हम भीग जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम तुरंत ही अपने कपड़े बदल लें। अब बाहर हैं तब तो ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक दो कपड़ा, जैसे गमछा है, अंगोछा है, या इस तरह के कोई कपड़े रख सकते हैं, तो कम से कम आप अपने हाथ मुंह को आप पोंछ सकते हैं, सुखा सकते हैं, सर को पोंछ सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी, जो संभावना हो सकती है उसकी, उसमें कमी आ जाएगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सर्दियों के मौसम में ही बीमार हो सकते हैं या गर्मी के मौसम में ही हो सकते हैं। बरसात का मौसम भी एक तरह से बहुत ज़्यादा संक्रमण वाला मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी रहती है, जगह जगह पानी भरा होता है, तो मच्छर, मक्खी ये सब पनपते हैं, और ये हमारे लिए स्वास्थ्य

के लिए हानिकारक तो हैं ही, तो साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पानी साफ और कोशिश अगर हो सके तो उबला हुआ पीजिए, उबाल कर ठंडा कर लीजिए उसको, तो हम पी सकते हैं उसको। आजकल हम क्या करते हैं कि कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, उमस भी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर पसीना पसीना है और हमने एकदम ठंडा पानी पी लिया। कई बार हम अपने साथ बैग में भी बॉटल में बहुत ठंडा पानी रखते हैं और जहाँ जी में आया वहाँ पी लिया, तो पता चला कि हमारा गला ख़राब हो गया या बुखार वगैरह आ गया, कुछ इस तरह की परेशानी होने लगी, ज़ुकाम हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो हम इनसे बच सकते हैं और बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। बरसात के मौसम में जहाँ तक खान पान की बात है, तो जो बाहर खुले में जो खाद्य पदार्थ बिकते हैं, कटे पटे फल जो होते हैं, उनको भी थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए, मत खाइए, परहेज कीजिए उनसे। और जब आप सब्ज़ी खरीद कर लाएं तो कोशिश कीजिए कि उसमें हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको कम लेकर आएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बरसात के मौसम में पुरवाई हवा चलती है और पुरवाई में मच्छर मक्खी ही नहीं, कीड़े भी बहुत पनपते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियों में हरे जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके पत्तों पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, तो पहले तो उनसे आप बचिए, मत लेकर आइए, और अगर लेकर आते भी हैं, ज़रूरत है, तो फिर बनाने से पहले यानी पकाने से पहले आप उनको अच्छी तरह से हो सके तो गर्म पानी से धो लीजिए और उसके बाद उसको पकाइए। घर के आसपास थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं होता है, जमा तो नहीं होता है, घर में कहीं छत के ऊपर या बालकनी में या बाहर कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पानी भर जाता है, या कोई ऐसा बर्तन तो नहीं रखा है बहुत ज़्यादा जिसमें पानी भरा हुआ और हमारा ध्यान ही नहीं है उसमें, ना कूलर में पानी भरा हुआ है, हम बदल नहीं रहे हैं। तो बरसात के मौसम में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फफूंदी बहुत होती है और फफूंदी होती है तो उससे भी हमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। कपड़े सुखा कर ही रखें, कई बार क्या होता है कि हमने कपड़े सुखाने के लिए डाले, बारिश आ गई और जल्दी जल्दी हमने उनको उतार कर और एक जगह पर घर में रख दिया कहीं, या मान लीजिए जगह नहीं है, सोचा कि बाद में इनको फिर सुखाएंगे और आपने रख दिया, वो थोड़ी देर अगर वो गीले कपड़े अगर रखे रहेंगे ना तो उनमें भी संक्रमण जैसे कुछ चीज़ें ऐसी पनप सकती हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, और उनसे जो नुकसान होता है वो त्वचा संबंधी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम उन कपड़ों को इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे तो हमारी त्वचा के संपर्क में आएंगे, तो उस तरह का हमें कोई नुकसान हो सकता है। बारिश के समय में जो विद्युत उपकरण है घर में उनको बंद कर दीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी जो विद्युत उपकरण है या विद्युत से चलने वाली चीज़ें हैं उनको मत छुइए, क्योंकि नमी होती है और जहाँ नमी होती है तो वहाँ विद्युत का करंट, बिजली का करंट हमें लग सकता है, तो उससे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप बरसात के मौसम में ध्यान रखिए। और वैसे बरसात का मौसम बहुत सुहाना होता है, मन भावन होता है, अच्छा लगता है, पुरवाई हवा चलती है और पुरवाई हवा के तो बहुत ज़्यादा कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने जाने क्या क्या लिखा है उसके बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि पुरवाई हवा में थोड़ी सी गर्माहट होती है, नमी होती है, उमस देती है, लेकिन फिर भी पुरवा हवा का अपना एक आनंद है।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर आसपास की सूचनाएं आपके लिए।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के साथ।
1: कि किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के करीब 125 करोड़ बच्चों को गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अगस्त में 2 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से होने वाले इन अभियानों के अंतर्गत पहले चरण में 3 से 7 अगस्त तक टिटनेस, डिफ्थीरिया और काली खांसी, तो दूसरे चरण में 18 से 28 अगस्त तक मीजल्स रूबेला का टीकाकरण किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अनुसार सभी DIOS और BSA को अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों के परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित किया जाएगा। अभियान के लिए प्रत्येक विद्यालय में नोडल शिक्षक नामित किए जाएंगे। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से पात्र बच्चों की सूची तैयार होगी। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए प्रार्थना सभा, अभिभावक शिक्षक बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की प्रगति की निगरानी राज्य और जिला स्तर पर नियमित रूप से होगी। सभी गतिविधियों की सूचना निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और टीकाकरण से छूटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आयकर विभाग ने आमजन को अपना रिटर्न आगामी 31 जुलाई यानी आज तक दाखिल करने की सलाह दी है, ताकि किसी नोटिस अथवा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग ने सभी करदाताओं को समय पर सही जानकारी के साथ अपना रिटर्न दाखिल करने और आवश्यक दस्तावेज का समर्थन भी सुनिश्चित करने की अपील की है। परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्थाओं और शिक्षकों की गरिमा बनाए रखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या इंटरनेट मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी परिषदीय विद्यालय परिसर में प्रवेश कर फोटो वीडियो नहीं बना सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों के लिए आदेश जारी कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध स्थायी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण की शुक्रवार को अंतिम तिथि है। अभी विश्वविद्यालय की 41,000 सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीटें खाली रह जाने पर 2 बार पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।

अभ्यर्थियों को 400 रुपए का शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों की प्रतिदिन लाइव लोकेशन ली जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर सफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। विकास भवन में स्थापित कंट्रोल रूम से कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। 690 ग्राम पंचायतों में 800 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। वर्षा के मौसम में जल भराव और गंदगी से बचने के लिए नियमित सफाई कार्य कराने की योजना बनाई गई है। सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन अपने तैनाती स्थल पर सफाई कार्य करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और नगर यात्रा को देखते हुए नगर निगम आगरा अपने एक्शन मोड में आ गया है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार से नगर परिक्रमा मार्ग और शहर के प्रमुख शिवालयों पर विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर निगम परिक्रमा मार्ग और मंदिरों के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी। नगर निगम ने सभी जोन के लिए विशेष रोस्टर तैयार किया है। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की टीमें सुबह से ही श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव, रावली महादेव, बल्केश्वर महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों और नगर परिक्रमा मार्गों पर पहुंचेंगे। मंदिर परिसरों, संपर्क मार्गों और आसपास उगी घास की सफाई कराई जाएगी। श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा बन रही पेड़ों की लटकती शाखाओं की छटाई भी की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने गृहकर्मी मिल रही 10% की छूट को 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब यह छूट 30 सितंबर तक मिलेगी। छूट की अवधि 31 जुलाई को खत्म होने जा रही थी। यह निर्णय गुरुवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। निगम क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसके अलावा 70,000 व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इस वित्तीय साल गृहकर की वसूली का लक्ष्य 150 करोड़ रुपए है। पिछले वित्तीय साल में 115 करोड़ रुपए था, जिसके सापेक्ष 118 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। देश में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और गोपनीय बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम बैंकों और विभिन्न यूपीआई एप्स के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत यूपीआई लेनदेन के दौरान ग्राहकों का पूरा मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय नंबर आंशिक रूप से छिपाकर प्रदर्शित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा बढ़ाना और साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा रायपुर और रहनकला में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा की गंगापुरम और नर्मदापुरम के 1,626 आवासीय भूखंडों के लिए 2,176 आवेदन आए हैं। दोनों टाउनशिप के लिए 29 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सूरसदन में लॉटरी पद्धति से 1 सितंबर को गंगापुरम और 2 सितंबर को नर्मदापुरम के भूखंडों का आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। केंद्र सरकार पुरानी कार, बाइक और अन्य वाहनों की खरीद बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अब पुराना वाहन खरीदने के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। अगर तय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो वाहन का स्वामित्व संबंधित डीलर के नाम माना जाएगा। भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से अपनी सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सी सामग्री पत्र मानी जाएगी और किन वस्तुओं को पार्सल की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए नई श्रेणी और ग्राहकों के लिए संशोधित शुल्क भी लागू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने

0: शिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा की चयन सूची में शामिल किए गए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कहा गया है कि मेरिट के आधार पर अभिलेख सत्यापन के लिए चयन सूची में शामिल जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 10 अगस्त को समस्त अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में बुलाया गया है। इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती मधु, पत्नी यतेंद्र, निवासी नगला इमली, थाना जगनेर, जनपद आगरा। मधु दिनांक 25 जून 2026 से अपने घर से लापता है। मधु की उम्र 19 वर्ष है। कद लगभग 5 फीट, लंबा कद है, नाक कान औसत, रंग गेहुआ है। घटना के समय काले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने हुई थी। मधु के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना जगनेर, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार अमित कुमार, पुत्र कुशलपाल सिंह, निवासी जामुनी भाम, धिमशी, थाना शमशाबाद, जनपद आगरा। अमित कुमार दिनांक 16 जून 2026 से दिन में करीब 11 बजे से अपने घर से लापता है। अमित कुमार की उम्र लगभग 33 वर्ष है। लंबा शरीर है, तंदुरुस्त है। कद लगभग 5 फीट और रंग सांवला है। अमित कुमार के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना शमशाबाद, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार मानवी, पुत्री निर्मल कुशवाहा, निवासी बलकावस्ती गोकुलपुरा, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा। मानवी दिनांक 22/6/2026 को दोपहर 3 बजे से कोचिंग पढ़ने गई थी और वापस नहीं लौटी है। मानवी का रंग गेहुआ है। कद 5 फीट 2 इंच है। चेहरा लंबा है, बदन इकहरा है और उम्र करीब 14 वर्ष है। मानवी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना हरी पर्वत, इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, सूचना देने के लिए आप थाना प्रभारी, थाना लोहा मंडी को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13

0: अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर

0: आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरों मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पे अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।

0: रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग।
1: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
2: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्स पैसेज ऑफ द बिल, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha

0: on winning the bronze medal in the women's discus throw event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In Under-17 World Championships, Indian wrestler Nikita Sehrawat settled for a silver medal, while Kamna Babel and Garima bagged bronze medals in the women's event in Baku, Azerbaijan, yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Anuja. Pledging fair exams, Parliament passing anti-paper league bill is a top front page headline in all the dailies today. Amid deepening West Asia crisis, Prime Minister Modi chairs fourth special meeting of Cabinet Committee on Security, focusing on citizen safety and energy security. The Times of India headline says, PM reviews safety of seafarers, supply chain constraints. The dailies have also noticed the apex court's decision refusing ban on use of pellet guns by security for crowd control. Sikhs preservation of records, writes the Pioneer. The Economic Times says, on a war footing, India Inc. to step up festive hiring, with temporary recruitment is expected to rise 8 to 25% from last year. According to World Gold Council, jewellery loses sheen. Gold exchange traded funds glitter, cites the Hindu. And finally, with the start of the holy month of Shravan, the administration has made arrangements for the smooth flow of Kanwar devotees. The Statesman reports NCRTC adds 52 Namo Bharat trips, trains every 8 minutes daily to clear Kanwar Yatra rush. The Times of India adds 1,000 CCTV cameras, 4,000 cops for smooth Kanwar Yatra. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill with stricter punishment for paper leaks. Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announce Maritime Defence Alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovepreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निजाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम जाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर मुमलिकत

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी ذاتی तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इरादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निजाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निजाम में इसलाहत करना लाजिमी हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तल्ख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहिब और 9 आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाय पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी उधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने उधम सिंह को गैर मामूली जुरत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो 1 अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
3: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 जिलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर जिलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं, ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेजी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: जम्मू और कश्मीर में

0: अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरूली में लाढ़ा के नजदीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर भाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निस्फ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नजदीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 जिलों में से 11 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीकाकार फराहम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आजादाना जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना, तजारत के बैनुल अक्वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। यह इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहर अहमर और खलीजे अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ्फुज की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैनुल अक्वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। यह धमाका बजाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरतहाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन खवातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजीशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़ेह सबूत है। आजरबाईजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को खवातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मस्कूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों की तहफ्फुज़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, यह खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निजाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खजामे हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि। स्वीकार कीजिए विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

धरती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। चराग फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं, इसे गाया है लता मंगेशकर और सखियों ने। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत मदन मोहन का।

0: चराग फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी और मौसिकार मदन मोहन।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में अब हम आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा एक गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज मोहम्मद रफी की।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम था जीने की राह। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। धूल का फूल इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, इस गीत को संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने और गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

ये आवाजें थी महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की। फिल्म का नाम था धूल का फूल। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार एन दत्ता। राजकुमार फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का।

राजकुमार फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, गीत रचना शैलेंद्र की थी और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इंदीवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। उषा खन्ना की तर्ज है, फिल्म का नाम है कारण, आवाज येसुदास की।

0: येसुदास की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत आप सुन रहे थे। उषा खन्ना की तर्ज थी, फिल्म का नाम था कारण। गीतांजलि कार्यक्रम में आज आपने धरती, चिराग, जीने की राह, धूल का फूल, राजकुमार और कारण फिल्मों के गीत सुने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
2: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही अन्य लोगों से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की अपील भी की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह से विकास हुआ है उससे देश की जनता खुश है, आम आदमी की आय बढ़ी है। छात्रों में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली कैंट छावनी में खगोलीय लैब बनाई गई। इस लैब का उद्घाटन रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता ने किया। तकनीकी उपकरण से लैस इस लैब के जरिए बच्चे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। मुख्य अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड डॉक्टर तनु जैन ने कहा कि छात्रों में हमेशा ब्रह्मांड को लेकर काफी उत्सुकता होती है और इसी उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली छावनी परिषद ने इसकी शुरुआत की है।
3: साइंटिफिक टेम्पर ऑफ स्टूडेंट्स डेवलप करने के लिए हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की हमने लैब्स यहाँ डेवलप करी हैं। हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाए और बेसिक इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं, जिससे कि बच्चों को ये पता रहे कि कौन से इक्विपमेंट्स का क्या मतलब होता है।
2: बरेली में महाभारत कालीन लिलौर झील पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन बनने जा रही है। गत दिनों झील पर आयोजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील पर किए जाने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। नौका विहार, टॉय ट्रेन के बाद इस झील के किनारे सरकार ने पर्यटकों के रुकने के लिए कॉटेज भी बनवाए हैं। इसके साथ ही इस झील पर मल्टीपर्पज हॉल व टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगभग 3 करोड़ की लागत से इन कार्यों का पूरा किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि

महाभारत काल में अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर इस झील पर आए थे, तो यक्ष के साथ उनका संवाद यही हुआ था, इसलिए इस झील का काफी महत्व है। अब इस झील को जीवांत करने के बाद पर्यटन मंत्रालय इसे सैलानियों के लिए बेहतर बना रहा है। पशुओं में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुक्त टीकाकरण पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीकाकरण की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीमों को रवाना किया। पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पशुओं में संचार

0: हरी झंडी दिखाकर टीमों को रवाना किया। पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पशुओं में संचारी रोगों को बचाया जा सके। टीकाकरण अभियान को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानव ही नहीं बल्कि पशुओं की भी चिंता करती है। जिस समय पर ये टीकाकरण शुरू किया गया है ताकि पशुओं में खुरपका मुंहपका जैसे संक्रामक रोग न फैल सके। 22 जुलाई को बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित परियोजनाओं और अन्य शिकायतों की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन में भी शिरकत की।
1: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
2: भगवान शिव की आराधना के लिए विख्यात श्रावण मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। यह मास पर्यंत शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक विभिन्न शिवालयों में करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सावन मास के प्रत्येक शिवालयों में जलाभिषेक किए जाते हैं। जनपद सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में सावन मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सीतापुर मुख्यालय स्थित श्यामनाथ मंदिर समेत बिस्वा के पत्थर शिवाला और नैमिषारण्य समेत अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूरे सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध आयोजन समेत मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों का जल भरकर भक्तगण विभिन्न शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है और श्रावण ले जाने वाले भक्तों को श्रावणिया कहा जाता है। सावन में श्रावणियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है।
3: लगातार पुलिस द्वारा पहले बैठकें की गई, सभी टीचर संस्था जो संचालक उनसे बात हुई है, जो कावड़ संस्थान और चलाते हैं कमेटियां हम सबसे बात हुई है। जितने मंदिर है उसके सब पे हमारी ड्यूटी कल सुबह से रहेगी, पोस्टर पार्टी हमारी रहेगी, सेक्टर जोनल स्कीम में मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी लगा दी है। बहुत शांतिपूर्वक पूरा कावड़ को मुहैया कराया जाएगा।
2: नजूल भूमि समेत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों और प्लाटिंग पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपतकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। इस अभियान में जहां प्लाईवुड फैक्ट्री जैसी प्रसिद्ध इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, वहीं ऐतिहासिक रंपा महल को भी खाली कराया गया है। पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हत्याकांड में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस हत्याकांड में शामिल गुनाहगारों को जेल के पीछे भेजा जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा हो। करीब 2 वर्ष पूर्व पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की शरेआम गोली मारकर असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सीतापुर में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सुजीता कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, किंतु महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण को सर्वाधिक महत्ता देते हुए वे अपने स्तर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्म, संकोच और भय के अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें और उनके निस्तारण के लिए प्रयास करें। यदि जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे महिला कल्याण विभाग समेत राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग महिलाओं

0: हितों के लिए सदैव अग्रसर रहता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम
3: वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद 9:25 पर आप सुनेंगे गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय वचनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। सदाबहार फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे सुरसरिता कार्यक्रम में 10:00। ये कार्यक्रम आज सावन के गीतों पर आधारित होगा।

समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इसमें आज का विषय है कलम का सिपाही, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद।

ग्यारह बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुमताज पर केंद्रित होगा। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 9:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।

पाठशालाओं में हम पढ़ते हैं, वाचन मिथ्या बिना विचार। यह उक्ति शब्दशः सत्य है। हमें किताबें पढ़ने का शौक हो तो अच्छा ही कहा जाएगा। आलस्यवश जो पढ़ता नहीं, बाँचता नहीं, वह अवश्य मूढ़ माना जाएगा। पर जो खाली पढ़ा ही करता है, पढ़े हुए पर विचार नहीं करता, वह भी लगभग मूढ़ जैसा ही रहता है। इस पढ़ाई के बदले में कितने ही लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं, वह एक अलग बात है। निरावाचन एक प्रकार का रोग है। हम में से बहुतेरे निरी पढ़ाई करने वाले होते हैं। वे पढ़ते तो हैं पर गुनते नहीं, विचारते नहीं, उसमें छिपे गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। फलतः पढ़ी हुई चीज पर वे अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिए कि थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन उस पर विचार अवश्य करें, उस पर अमल अवश्य करें, या यूं समझें कि उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। अमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे त्याग दें, और जो ठीक जान पड़े, अच्छा लगे, उसे ग्रहण करके आगे बढ़ें। ऐसा करने वाला थोड़ी पढ़ाई से भी अपना काम चला सकता है, बहुत सा समय बचा लेता है, और वह मौलिक जिम्मेदारी उठाने के योग्य बन जाता है। जो विचार करना सीख लेता है उसको एक लाभ

और भी होता है जो उल्लेखनीय है। पढ़ने को हमेशा नहीं मिल सका, देखने में आता है कि जिसे पढ़ने की आदत पड़ गई हो उसे यदि पढ़ने को नहीं मिले तो वह परेशान सा हो उठता है, पर जिसे विचार करने की आदत पड़ जाए तो उसे कहीं कुछ लेने नहीं जाना पड़ता और विचार पोथी को पुस्तक की भांति उसे कहीं खोजने की भी आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार करने वाले व्यक्ति को परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता। विचार करना सीखना, यह शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। सही गलत निठल्ले विचार तो बहुतेरे किया करते हैं, वह तो पागलपन है। कितने ही व्यक्ति विचारों के भंवर में पड़कर निराश हो जाते हैं और आत्मघात भी कर बैठते हैं। इस समय तो मेरा तात्पर्य पढ़े हुए पर विचार करने से है, उस पर गुनने से है और आपने जो पढ़ा उस पर अमल करने और उसे व्यवहार में लाने से है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आज हमने एक भजन सुना या पढ़ा, उसका अपने मस्तिष्क में विचार करना, उसके अर्थ का मायने का मंथन करना, उसमें क्या रहस्य है, क्या भेद है, उससे मुझे क्या ग्रहण करना है, किस बात का त्याग करना है, इसकी छानबीन करना, इसे ढूंढना, उसमें दोष हो तो उन्हें देखना, उन्हें परखना, यदि उसका अर्थ समझ में नहीं आया हो तो उसे समझने का प्रयास करना, यही विचार पद्धति कही जाएगी। यह मैंने सादे से सादा दृष्टांत लिया है, इसमें से हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरा दृष्टांत घटित कर ले और आगे बढ़ता चले। ऐसा करने वाला व्यक्ति अंत में आनंद भोगेगा और जीवन में पूरी पढ़ाई का वाचन विचार के रूप में फलेगा। अब मिसाल के तौर पर एक पंक्ति को ले लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। हम देखेंगे कि यह पंक्ति तो एक है लेकिन इसके अर्थ व्यापक और अनेक हैं। इसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि इस पंक्ति में से आप कौन सा उत्तम से उत्तम अर्थ ढूंढ पाते हैं और किस तरह अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं। अरे मुसाफिर उठ, सवेरा हुआ, अब रात कहां है जो तू सोता है। इतना समझकर जो उठकर मात्र बैठ जाता है उसने पढ़ा तो सही पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया, क्योंकि वह तो सवेरे के समय उठकर ही अपने आप को कृतार्थ मान लेता है। पर जो विचार करना जानता है वह तो अपने आप से पूछता है, मुसाफिर यानी कौन, सवेरा हुआ के माने क्या हुए, रात गई, सोना क्या है। यों यद सोचने बैठ जाएं तो रोज एक पंक्ति के अनेक अर्थ निकाल लें और समझें कि मुसाफिर यानी जीव मात्र, मन में इसका मंथन करें और इसके गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न करें। जो अर्थ ठीक जान पड़े उसका जीवन में प्रयोग करें। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसे ईश्वर पर आस्था है उसके लिए सदा ही सवेरा है, रात के मानी आराम भी हो सकते हैं, और जो जरा भी लापरवाह रहता है उस पर यह पंक्ति घटित होती है। और आइए अब सुनते हैं बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। गांधी चर्चा कार्यक्रम आप प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9:25 पर सुनते हैं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ भजन। ये है कार्यक्रम का पहला भजन। इसे गाया है प्रीति सागर ने।

आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज में भजन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सावित्री दीक्षित के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली लोक रचना।

आप सुन रहे हैं सावित्री दीक्षित के स्वर में ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर सावित्री दीक्षित।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत, कलाकार एक बार फिर सावित्री दीक्षित।

0: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सावित्री दीक्षित के गाए ब्रज लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुर सरिता।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सुर सरिता के इस विशेष कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आह, क्या मौसम है, क्या खूबसूरत प्राकृतिक नजारे हैं। आसमान में काली घटाओं का आगमन है तो धरती का आंचल हरियाली से भरपूर है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी जब प्राकृतिक दृश्यों पर नजर ठहरती है तो मन का मयूर नृत्य करने को मचलने लगता है, क्योंकि क्लांत और सूखा जीवन भी क्षणिक तरलता के लिए व्याकुल हो जाता है, और ये तब और अधिक बेचैन हो जाता है जब सावन के सुहाने महीने की शुरुआत हो जाती है।

सावन का महीना, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों ने इशारा तो कर दिया है कि सावन आ चुका है। अब अगले कई दिनों तक रिमझिम फुहारें धरती के आंचल को और हमारे मन की कोमल मिट्टी को भिगोती रहेंगी। पेड़ पौधों की शाखाओं से बूंदें गिरेंगी, पत्तों से पानी झरेगा। गांव के कच्चे मकान ही नहीं बल्कि शहर के पक्के भवन भी वर्षा के जल को अपने भीतर ऐसे सूखेंगे जैसे कितने दिनों से प्यासे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मन बहुत दिनों से किसी के प्रेम के लिए प्यासे हैं।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरसरिता अपने रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा व्यवसायिक अंतराल।

वसंत को ऋतुराज कहते हैं तो वर्षा को ऋतुओं की रानी। लेकिन वर्षा रानी का जो वास्तविक वैभव है वो सावन में ही दिखाई देता है, या यूं कहें कि वसंत की मादकता और वर्षा की समरसता दोनों का एक साथ संधान हो जाता है। सावन एक मधुर संगीत के जैसा है, यह हमारे भीतर राग अनुराग का सृजन करता है।

सावन का महीना, बरसात की ठंडी पुरवाई में जीवन की तन्हाई जब अंगड़ाई लेती है तो मन डोलता है, कुछ बोलता है कि सावन को आने दो। और जब सावन का आगमन हो जाता है तो ये हमारे नैना

जीवन की तन्हाई जब अंगड़ाई लेती है तो मन डोलता है, कुछ बोलता है कि सावन को आने दो। और जब सावन का आगमन हो जाता है तो ये हमारे नैना कभी सावन भादों हो जाते हैं, तो सावन में कभी हमारा मन सुलग सुलग जाता है।

सोचता हूं जीवन के गीतों का संसार कितना सूना होता अगर वर्षा के इंद्रधनुषी, मेघवर्णी, बिजली जैसी चपल और चंचल गीत न होते। इन गीतों में स्मृतियों का जल होता है, संवेदना के मेघ होते हैं, शब्दों की संजीवनी होती है। जो ठिकाने हम छोड़ आए हैं उन तक एक संदेश भेजने के लिए आज भी ये व्याकुल मन मेघों को पुकारता है, तो केवल सावन के महीने में।

मेघों को पुकारने की तीव्रता इसलिए भी संभव है कि सावन का सुहाना मौसम है और हमें ये आशाएं हो जाती हैं कि ये सावन बरस बरस कर हमारे भीतर मुरझा रहे प्रेम के फूलों को सराबोर कर देगा, उन्हें जीवित कर देगा। सच तो ये है कि जब बाहर बरसात होती है तो हमारे भीतर भी टप टप कुछ बरसता है। आंख भले ही सूखी रहे लेकिन दिल तो भर आता है और सावन के गीत गुनगुनाने का मन करता है। तो सावन का महीना है और सावन के इस महीने में आप भी सावन के गीत गुनगुनाइए और हमें आज के इस विशेष सुरसरता कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। स्वीकार कीजिए विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुर सरिता अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं देवाशीष चक्रवर्ती का गिटार वादन। प्रस्तुत है गिटार पर आपका बजाया राग चारुकेशी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। गिटार वादन में आज कलाकार थे देवशीष चक्रवर्ती और राग था चारुकेशी।

दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही पुराने हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर आंखों के सामने घूमने लगता है, और उन्हीं चेहरों में एक नाम है मुमताज। नमस्कार साथियों, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मैं हूँ अंजलि, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज की कलाकार हैं भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मुमताज। जरा सोचिए, वो चुलबुली मुस्कान, आंखों की शरारत और ऐसा अंदाज कि पर्दे पर आते ही हर किसी की नजर बस उन्हीं पर ठहर जाती थी। मुमताज सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि 60 और 70 के दशक की सबसे चमकदार सितारों में से एक थी। 31 जुलाई 1947 यानी आज ही के दिन मुंबई में जन्मी मुमताज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की। शुरुआत आसान नहीं थी उनके लिए भी, बहुत संघर्ष रहा उनकी भी जिंदगी में। कई फिल्मों में उन्हें स्टंट फिल्मों का रोल मिला, छोटे छोटे किरदारों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो आइए उनको याद करते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये बेहतरीन नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

कहते हैं मेहनत अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है, और मुमताज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आया वो दौर जब उनकी जोड़ी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ खूब पसंद की गई। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, अपना देश और रोटी जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि दर्शक नई फिल्म का इंतजार सिर्फ उन्हें देखने के लिए करते थे। तो हम भी आपको इंतजार ना कराते हुए सुनते हैं ये अगला नगमा, जो है फिल्म सच्चा झूठा से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

कार्यक्रम आज के कलाकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं मुमताज की। पता है आपको मुमताज की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनकी बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग। वो रोती थी तो दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाते थे, और जब वो हंसती थी ना तो थिएटर

0: तालियों से गूंज उठता था। कॉमेडी हो, रोमांस हो या इमोशनल सीन, हर किरदार में वो पूरी तरह ढल जाती थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मुमताज को साड़ी पहनने का उनका खास अंदाज इतना पसंद किया गया कि उस स्टाइल को लोगों ने मुमताज स्टाइल साड़ी का नाम दे दिया और वो उस दौर का फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया था। तो अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा उन पर फिल्माया हुआ।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: जानी मानी अभिनेत्रियों में मुमताज का नाम भी किसी से पीछे नहीं है। 1971 में फिल्म खिलौना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह उनके शानदार अभिनय का बड़ा सम्मान था। हालांकि शादी के बाद मुमताज ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनके चाहने वाले उनके दिलों से उनकी जगह कभी भी कम नहीं हुई। आज भी जब उनके गाने बजते हैं या उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो एक अलग ही नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं ये अगला नगमा उन्हीं पे आजमाया हुआ।
1: इतनी बड़ी कलाकार आशा भोसले जी, जिनके बारे में सभी संगीतकार क्या पूरा देश ही जिनके गाने के गुण गाता है, जिसके स्वभाव के गुण गाता है, मैं सूरज को क्या रोशनी दिखलाऊं।

लेकिन जिनके बारे में सभी संगीतकार क्या पूरा देश ही जिनके गाने के गुण गाता है, जिसके स्वभाव के गुण गाता है, मैं सूरज को क्या रोशनी दिखलाऊं।

दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो सिर्फ धुने नहीं बल्कि सुनहरे दौर की मीठी यादें भी साथ चली आती हैं। इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलेंगे आज के कलाकार में एक और ऐसे ही बेमिसाल फनकार की कहानी लेकर। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, वक्त बदलता रहा, सिनेमा बदलता रहा, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। मुमताज उन्हीं सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान, अपनी अदाकारी और अपनी जिंदा दिली से करोड़

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है कलम के सिपाही महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। आज उनकी जयंती है और आज इस कार्यक्रम में हम उनके बारे में बात करेंगे आपसे और आपको रूबरू कराएंगे उनके हर पहलू से। हिंदी कथा साहित्य को तिलिस्मी कहानियों के झुरमुट से निकालकर जीवन के यथार्थ की ओर मोड़कर ले जाने वाले कथाकार मुंशी प्रेमचंद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी होते हैं। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। बातें करेंगे लेकिन फिलहाल चलते हैं गीतों के सफर पे और सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद का जो असली नाम था वो था धनपत राय। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर में 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ। अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने धनपत राय की बजाय प्रेमचंद उपनाम रख लिया। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाकघर में मुंशी का पद संभालते थे। शुरुआती दिनों में चुनार में शिक्षक थे, तब उन्हें 18 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पर भी बराबर की पकड़ रखते। प्रेमचंद जब 6 वर्ष के थे, तब उन्हें लालगंज गांव में रहने वाली एक मौलवी के घर फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। वे जब बहुत ही छोटे थे, बीमारी के कारण इनकी मां का देहांत हो गया था। उन्हें प्यार अपनी बड़ी बहन से मिला। बहन के विवाह के बाद वे अकेले हो गए। सूने घर में उन्होंने खुद को कहानियां पढ़ने में व्यस्त किया, और शायद यही जो वक्त था आगे चलकर वे स्वयं कहानियां लिखने लगे और महान कथाकार बने। धनपत राय का विवाह 15-16 वर्ष में ही कर दिया गया, लेकिन ये विवाह उनको ज्यादा फला नहीं, और कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने बनारस के बाद चुनार के स्कूल में शिक्षक की नौकरी की, साथ ही बीए की पढ़ाई भी उन्होंने वहां से की। शुरुआती समय मुंशी प्रेमचंद के लिए भी आसान नहीं था।

निकले हुए। उन्होंने जनजीवन को बहुत गहराई से देखा और अपना जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। प्रेमचंद की चर्चित कहानियां हैं मंत्र, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, आत्माराम, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन, उधार की घड़ी, नमक का दरोगा, पंच फूल, प्रेम पूर्णिमा और जुर्माना आदि। अपनी रचना गबन के जरिए एक समाज की ऊंच नीच, निर्मला से एक स्त्री को लेकर समाज की रूढ़िवादिता और बूढ़ी काकी के जरिए समाज की निर्ममता को जिस अलग और रोचक अंदाज में उन्होंने पेश किया, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी तरह से पूस की रात, बड़े घर की बेटी और बड़े भाई साहब, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो अद्भुत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। बीए की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिन्होंने प्रेमचंद की जीवनी भी लिखी थी। शिक्षक की नौकरी के दौरान प्रेमचंद के कई जगह

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां और 14 बड़े उपन्यास लिखे। उनके रचे साहित्य का अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है, जिसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं।
1: कुछ

श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को अपना जीवन दिया, लेकिन सन 1935 में मुंशी जी बहुत बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें।

आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है और श्रोताओं अब खड़ी इशारा कर रही है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की तरफ। तो सुनते हैं कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
3: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
3: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
3: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
3: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
3: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
3: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
3: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
3: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
3: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी। इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आप

0: को दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदरदास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था।

0: लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
1: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
0: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, अरे
1: मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।

0: जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
2: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
3: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
3: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
4: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का

0: भगवान संस्करण लेकर आया हूँ।
1: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वरमालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शततल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
2: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
1: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
2: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
4: लयात्मक प्रस्तुति।
3: शीर्षक है
4: अभी न होगा मेरा अंत।
3: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय है हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म एतराज से। गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत रचना है हिमेश रेशमिया की।

अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना ऐतराज फिल्म से, जिसमें सुर दिए थे उदित नारायण और अलका याग्निक ने, शब्द थे समीर के और संगीत था हिमेश रेशमिया का। एक बार फिर से सुनते हैं अलका याग्निक को और कुमार सानू की आवाज में ये प्यारा सा गाना, जिसे शब्दों में पिरोया है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: जिसे गाया था अलका याग्निक और कुमार सानू ने, शब्द थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम संगीत फिल्म संगीत कार्यक्रम नए तराने में। और अब हम सुनेंगे अगला संगीत, अगला गाना जो है फिल्म सिर्फ तुमसे, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, कुमार सानू ने, और शब्द दिए हैं समीर सुरेंद्र कपूर ने, और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना फिल्म सिर्फ तुमसे, जिसे सुरों से सजाया था अलका याग्निक और कुमार सानू ने, और शब्दों में पिरोया था समीर और सुरेंद्र कपूर ने, और साथ में संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म छिछोरे का ये गाना, जिसमें गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे से अरिजीत सिंह को, शब्द थे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत था प्रीतम का। अब आइए सुनते हैं फिल्म एक रिश्ता से, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी आप सुन रहे हैं अलका याग्निक कुमार सानू को फिल्म एक रिश्ता में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम शिवण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शिक्षा है जीवन का अमूल्य उपहार, शिक्षित परिवार विकास का आधार।

श्रोताओं, आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब आप शाही सवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने कल अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया। राज्यसभा ने कल इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही 29 जुलाई को पास कर चुकी है। बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले गिरोहों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
0: अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 कई सख्त दफात पर मुश्तमिल है। बिल में कई सख्त दफात शामिल है। जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और जायदाद जब्त करने की सजा है। 2 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा बराए विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मुल्क भर के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों से बातचीत करेंगे। ये नौजवान मुल्क भर में तकरीबन 10,000 मकामात से अमली तौर पर जुड़ेंगे। इस प्रोग्राम के सिलसिले में कल लखनऊ के जनभवन में गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर आनंदीबेन पटेल की सदारत में रियासत की तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान वर्चुअल डायलॉग के खाका और दीगर तैयारियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। पूरी कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी शहीद उधम सिंह को उनकी 87वीं यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिदी ने आजादी सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वजीर आला ने लिखा कि अजीम मुजाहिदी ने आजाद सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर आजिजाना खराज अकीदत, जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिस बहादुरी और हिम्मत का मजहरा कि वह हिंदुस्तान की तारीख में सदियों तक मिसाली रहेगी। वहीं आज नावल और मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद की 146वीं यौम पैदाइश है। अदब में उनका मकाम बेमिसाल है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नावल के बादशाह मुंशी प्रेमचंद को उनके यौम पैदाइश पर आजिजाना खराज अकीदत पेश किया। गोदान गबन और रंगभूमि जैसी लाजवाब तख्लीकात लिखी। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तानी समाज की हसासतियों को जद्दोजहद और हकीकतों का भरपूर इजहार किया। मुंशी प्रेमचंद यौम पैदाइश के मौके पर उनके आबाई गांव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल में एक अजीम शान फेस्टिवल 2026 का इनेकाद किया गया। रियासती हुकूमत ने श्रावण माह और कांवड़ यात्रा के पूरम नो महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। इंतजाम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी एसपी गोला और पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्णा ने कल बरेली में बरेली और मुरादाबाद डिवीजन के जिला मजिस्ट्रेटों और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अहदेदारों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर जिले में शदीद बारिश के पेश नजर जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। सैलाब जैसी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम वक्त से पहले कर लिए गए हैं। कलीदी तैयारियों में हर तहसील के सतह पर 32 फ्लड पोस्ट, 35 फ्लड शेल्टर्स, 5 कंट्रोल रूम और 25 कश्तियां फौरी रिलीफ और रेस्क्यू के लिए मख्तस है। इंतजामिया दरियाओं के पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वाराणसी से अयोध्या जाने वाली एक टूरिस्ट क्रूजर गाड़ी जुमे की सुबह तकरीबन 5:15 बजे लंबा इलाके में हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के शिवदी के रहने वाले तकरीबन 15 यात्री सवार थे। रास्ते में अचानक पीछे का टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए लम्बा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई और जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया। रियासत के कई अजला में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल और पुलिस डीजीपी को बलिया पुलिस कांस्टेबल के मुबैना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि रियासत में अमन अमान बरकरार

0: रखने के बजाय पुलिस स्टेशन मुसलसल तजारती सरगर्मियों में मसरूफ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय है महिलाओं श्रोताओं के कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार में मेरी सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। बहनों, आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी सखी लक्ष्मी शर्मा। बहनों, सावन का महीना शुरू हो गया है, सभी तरफ हरियाली छाई हुई है। हरियाली से, अपनी प्रकृति से एक बात याद आई। आजकल एक प्रकरण बहुत चर्चा में है, जिस पर बहुत बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वह यह है कि बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग का यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते से भी कम समय में पिघल जाना, जिसकी वजह से वहां जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ा और उनको बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों ने बहुत चर्चा की, लेकिन इस समस्या का समाधान चर्चा से नहीं होगा, यह हम सब जानते हैं। इसके लिए हम सबको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। यह सब प्राकृतिक असंतुलन की वजह से हो रहा है। इसके कई कारण हैं। तापमान में तेजी से होती वृद्धि इसका मुख्य कारण है। भौतिकता की इस अंधी दौड़ में हम वनों को काटते जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा और सुना होगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव के लिए करीब 4000 पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, जिसे 11 दिन चले अनशन के बाद वापस ले लिया गया। इन वनों को, पेड़ों को काटने से हमने पशुओं से उनके प्राकृतिक आवास छीन लिए, जिसकी वजह से आए दिन हमें इंसानी और पशुओं के बीच जानलेवा संघर्ष की खबरें मिलती हैं। पहाड़ों को काटकर नए नए रास्ते बना रहे हैं, लोग पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और वही सारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक बोतलें फेंक दे रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कचरा, ये गंदगी हम फैला रहे हैं, और जब पर्यावरण और प्रकृति खराब हो रही है तो इन सब के लिए हम सरकार को कोस रहे हैं, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर वास्तव में हम अपने पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर चिंतित हैं, वास्तव में हम ये चाहते हैं कि ये जो हो रहा है इस पर किसी तरह से नियंत्रण पाया जा सके, परिस्थितियों को बदला जा सके, तो उसके लिए आम आदमी का प्रयास करना, हमारा खुद का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग हमारी प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हम अपने चलन से प्लास्टिक को बाहर नहीं कर पा रहे हैं। पानी की यूं ही बहा रहे हैं, घरों का कचरा, मल मूत्र सब नदियों में बहाकर उनको खराब कर रहे हैं, अपना घर महल जैसा चमका रहे हैं, और प्रकृति जो हमें जीवन की मूलभूत चीज़ें दे रही है उसे गंदा किए जा रहे हैं। पता है इन सब में दिक्कत क्या हो रही है? हमको लगता है कि अकेले हमारे करने से आखिर क्या होगा, पर हमको यह नहीं पता कि जग कैसा, मेरे जैसा मतलब दूसरे को, किसी को भी काम के लिए प्रेरित करना या किसी काम के लिए दूसरे से उम्मीद करना या उससे शुरुआत करवाने से पहले हमें खुद सबसे पहले उस कार्य की पहल करनी होगी। अगर सभी ये सोच लें कि मेरे करने से क्या होगा, तो फिर तो प्रकृति का संरक्षण सिर्फ कितारों में ही रह जाएगा। वनों को यूं ही काटते रहिए, धरती का तापमान इतना बढ़ गया है कि गर्मियों के मौसम में आदमी का घर से निकलना दूभर हो गया है। घरों में, ऑफिस में एसी लगाकर हम तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, पर धरती के तापमान का क्या? उसका बढ़ना हम कैसे रोकें? उसके लिए तो हमें पेड़ ही लगाने पड़ेंगे, उन पेड़ों का ध्यान भी रखना होगा, और हम कर बिल्कुल उल्टा रहे हैं। भैया, प्रकृति संरक्षण कोई सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, तभी प्रकृति अपने मूल रूप में वापस आ पाएगी और बरकरार रह पाएगी। क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर शायद कभी ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। बहनों, एक माँ होने के नाते, घर की गृहिणी और मुखिया होने के नाते, अपने बच्चों की पहली गुरु और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आज से ही अपने बच्चों को भी प्रकृति का संरक्षण का महत्व समझाएं। तो आइए अभी सुनते हैं सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रकृति के सारे रंगों को बिखेरता हुआ यह गीत, जिसे गाया है मुकेश ने अपनी मधुर आवाज में।

अब इसमें देखिएगा कैसे बदलाव आते हैं अलग अलग पड़ाव पे। रेशम की नाजुक डोर, चमकीली सी एक भोर, मध्यम बयार के संग एक अनकही सी बात, आखिर वो कौन है? जवाब में एक मौन है। फिर उसका पड़ाव जो बदलता है उस पे देखिएगा अब आगे पंक्तियां। मिल गई थी मुझको राहों में वो अंतरतम की चाहों में, मिल गई थी मुझको राहों में वो अंतरतम की चाहों में, उसमें था हरियाला सावन, कुछ मधुर मधुर कुछ था पावन, कुछ मधुर मधुर कुछ था पावन, आखिर वो कौन है? जवाब में एक मौन है। चंचल बलखाती एक नदिया सी, चंचल बलखाती एक नदिया सी, चहक रही वो चिड़िया सी, चहक रही वो चिड़िया सी, पंख लगे थे बिजली के, पंख लगे थे बिजली के, रंग थे उसमें तितली के, मैंने पूछा तू कौन है? जवाब में अब न मौन है। नहीं नहीं मैं केवल नारी, नहीं नहीं मैं केवल नारी, मेरा है अस्तित्व अलग, मेरी भी अपनी पहचान है, मेरी भी अपनी पहचान है, मेरा है व्यक्तित्व अलग, मेरी भी अपनी पहचान है, मेरा है व्यक्तित्व अलग। अब एक कुछ पंक्तियां मैं थोड़ा सा रूमानी करने के लिए आपको इसका रुख बदल रही हूँ और थोड़ा रूमानी करती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। मत लाना मेरे लिए तुम फलक के चांद और तारे, मत लाना मेरे लिए तुम फलक के चांद और तारे, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, साथ चाहिए एक बार नहीं बार बार चाहिए, साथ चाहिए एक बार नहीं बार बार चाहिए, और वहां भी चाहिए जहां मैं अकेली हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, घबराऊं और चाहूं कि आज तुम मेरे पास आ जाओ। कानों में फुसफुसा कर कहो सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आ गया हूं। कानों में फुसफुसा कर कहो सब ठीक हो जाएगा, मैं आ तो गया हूं अब सब ठीक हो जाएगा, नहीं भी होगा तो क्या, नहीं भी होगा तो क्या, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारे इस मीठे से आश्वासन को यकीन बना लूंगी, तुम्हारे इस मीठे से आश्वासन को यकीन बना लूंगी, यकीन बना लूंगी मैं सब ठीक कर दूंगा को। सुनो इस बार जब तुम आना ना तो खाली हाथ मत आना, इस बार जब तुम आना ना तो खाली हाथ मत आना, पास के बगीचे से सब्र के फल तोड़ लाना, सब्र के फल तोड़ लाना, चक्कर देखूंगी सच में ये मीठे होते हैं क्या। हाँ हाँ मैंने सब्र का वो पेड़ रोपा तो था पर फल अब तक नहीं चखे, नहीं चखे क्योंकि तुम्हारे हाथ से ही खाना चाहती हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से ही खाना चाहती हूं मैं, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, वो आधा चांद जो तुम छोड़कर मेरे पास गए थे, वो आधा चांद बस वही आधा चांद। कुछ पंक्तियां इंतजार पर। शाम की तन्हाइयों में अक्सर, शाम की तन्हाइयों में अक्सर कुछ ढूंढती हूं मैं, कुछ लम्हे कुछ यादें और कुछ पल, शाम की तन्हाइयों में अक्सर कुछ ढूंढती हूं मैं, कुछ लम्हे कुछ यादें और कुछ पल, वो दूर क्षितिज में इंद्रधनुष, वो दूर क्षितिज में इंद्रधनुष, कुछ अनदेखा कुछ अनबूझ, वो मंद रेशमी बयार वो सिंदूरी बादलों की कतार, वो मंद रेशमी बयार वो सिंदूरी बादलों की कतार, एहसासों की वो छुअन, आज भी है उसका इंतजार बस उसका इंतजार, वो तमन्ना वो ख्वाहिश वो हसरत वो आरजू, वो नर्म सर्दियां वो सपनीली शाम और तितली के पंखों से रंगीन ख्वाब, और तितली के पंखों से रंगीन ख्वाब, वो नजरों का मिलना वो पलकों की चिलमन, वो नजरों का मिलना वो पलकों की चिलमन, वो बारिश की बूंदें वो भीगा सा मन, आज भी है उसका इंतजार बस उसका इंतजार, बस उसका इंतजार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी। मेरे एहसासों पर

0: बहनों आइए सुनते हैं काव्य पाठ जो हमें सुना रही हैं अर्षा राय।
1: मेरी कविता का शीर्षक है मेरा अस्तित्व। ओस की एक बूंद सी निर्मल, ओस की एक बूंद सी निर्मल, फूलों की पंखुड़ी सी कोमल, तितली की सहेली, एकदम वो अकेली, आखिर वो कौन है? जवाब में एक मौन है।

0: उगी नागफनी, मेरे एहसासों पर उगी नागफनी, अंतर में फैला बंजर और रेत सी फिसलती जिंदगी, जिंदगी जो यूं ही अचानक मिल गई थी एक मोड़ पे। साथ साथ कुछ कदम साथ चले थे हम, साथ साथ कुछ कदम साथ चले थे हम, दर्द के वीरानों में भी साथ थी वो मेरे, करीब और करीब मेरे सारे वजूद पर, हर शय से बेखबर आसमानों से परे। आज फिर उसने मेरे दर पर एक दस्तक दी है, आज फिर उसने मेरे दर पर एक दस्तक दी है, कानों में कुछ कहा है, एहसासों में हरकत की है, वादा किया है उसने रोशनी के काफिलों तक साथ साथ चलने का, वादा किया है उसने रोशनी के काफिलों तक साथ साथ चलने का। मेरी इस कविता का शीर्षक है एहसास। कुछ बेहद कीमती चीजें देखी सुनी है मैंने, अंतरतम में अनुभव किया है, बच्चों की चुलबुलाहट को, कभी कभी साथियों की खिलखिलाहट को, चिड़ियों के चहकने को या खुद के बहकने को, रिमझिम बरसात को, अपनों के साथ को, दोस्ती की लहरदार रागतान को, कभी तुम्हारी मुस्कान को, कभी कभी सच्चे झूठे वादों को और हंसा हंसा कर रुलाने वाली यादों को, यादें असीमित उथली उथली यादें, गहनतम यादें, याद है ना पहली मुलाकात या मुक्कालात, चहक रहे थे हम बिना किसी संदर्भ प्रसंग भूमिका के, मानो कल नाम की कोई चिड़िया हो ही ना, तभी लगा था मुझे निभेगी ये दोस्ती और आज तक अनुभव करती हूँ, जाने अनजाने कितना जानते हैं हम अपनों को, कभी सोचती हूँ विधाता ने भी वो संबंध गढ़े हैं, एक रक्त जनित जो मजबूरी भी हो सकते हैं, दूसरा अपना बनाया मन का माना जो होता है पर नहीं होता, जो समझ में आता है अनबूझा सा, मैं नहीं जानती कि इस मन में ये दोस्ती कैसे समाई और ना जानना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम उन गिने चुने लोगों में से एक हो जो भावनाएं बनाते भी हैं और उन्हें चुराते भी हैं, जिन्हें मैं खोजूंगी जीवन भर, पर मेरा अंतर खुश है कि तुमने चोरी की, करते रहना।
1: अभी सुन रहे थे काव्य पाठ जो सुना रही थी अर्षा राय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पर समय है एक छोटे से अंतराल का।

बहनों, आज है एक बेहद ही खास शख्सियत का जन्मदिन, जो हिंदी और उर्दू के महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की थी। उनका साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का माध्यम भी था। बहनों, हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई 1880 को, यानी आज ही के दिन जन्मे मुंशी प्रेमचंद की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्यों में महिलाओं की स्थिति, उनकी पीड़ा, संघर्ष, आत्मसम्मान और अधिकारों को बहुत संवेदनशीलता से चित्रित किया। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय का विरोध किया। इनको आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास का पितामह कहा जाता है। इन्होंने जिस साहित्यिक परंपरा की नींव डाली, वह केवल अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक तरह का सामाजिक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और हास्य पर खड़े लोगों को आवाज बुलंद की, उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। अपने साहित्य में इन्होंने भारतीय नारी के जीवन को बहुत ही आत्मीयता, सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। इनके साहित्य में वर्णित महिला पात्र अक्सर गरीब,

पिछड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली ऐसी महिलाएं होती थी जिन्होंने साहस का, विवेक का, आत्मसम्मान का, आत्म स्वाभिमान का परिचय दिया। उनमें रूढ़ियों से टकराने का दम भी था और पुरुषवादी समाज में अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने का साहस भी। अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी आता है और अपनी बात को मजबूती से रखना भी। बड़े घर की बेटी की अनारकली हो, माँ की निरुपाय वृद्धा, ठाकुर का कुआ की गंगी हो, निर्मला की निर्मला या गोदान की धनिया, ये सभी पात्र मुंशी प्रेमचंद के स्त्रियों से अपेक्षा, स्त्रियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण और तत्कालीन कुरीतियों पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त हैं। प्रेमचंद जी का मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान और अवसर मिले। उनका साहित्य आज भी हमें न्याय, समानता, मानवता और सामाजिक सुधार की प्रेरणा देता है। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल अपने समय के लिए नहीं बल्कि आज के समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके विचार हमें एक संवेदनशील और समानतापूर्ण जागरूक समाज के निर्माण में प्रेरणा देते हैं। तो बहनों, आइए अभी सुनते हैं एक गीत फिल्म प्रेम पुजारी से।

बहनों, आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में नई नई वैरायटी की ज्वेलरी छाई हुई है। कभी पर्ल तो कभी कुंदन, कभी बंजारा तो कभी कश्मीरी ज्वेलरी। ये ना केवल दिखने में सुंदर होती है बल्कि पहनने वाले के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्टाइल को निखारने में मदद भी करती है। इसको पहनने के साधारण से दिखने वाले कपड़े भी स्टाइलिश लगने लगते हैं। फैशन ट्रेंड के अनुसार नए नए डिज़ाइन आसानी से मिल भी जाते हैं। शादी हो, पार्टी हो, घर या ऑफिस हो, सबके लिए अलग अलग डिज़ाइन हैं। और सबसे ज़रूरी, सोने और चांदी की तुलना में काफ़ी किफ़ायती हैं। वो कहते हैं ना कि सोने से कम नहीं

0: और खो जाए तो गम नहीं। तो बहनों, आप भी अपने स्टाइल को पूरा करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने लुक को खास और यादगार बनाने के लिए इन फैशन ज्वेलरी को शामिल करिए अपने आभूषण के जादू के पिटारे में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बेनो, आज के रेसिपी टाइम में हम बनाएंगे ककुम्बर दही सैंडविच, जो मिनटों में बनता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी। इसके लिए एक खीरा को छील कर धोकर अच्छे से कद्दूकस कर लें और उसका पानी निकाल दें। अब एक बाउल में कद्दूकस खीरा, दही जिसका पानी निकला हुआ हो, और एक चम्मच मेयोनीज, काली मिर्च पाउडर, नमक और ओरिगानो को अच्छे से मिक्स करें। सैंडविच ब्रेड लें, उस पर एक तरफ पहले से हरी चटनी लगाकर ऊपर से तैयार मिश्रण लगाएं, फिर दूसरे ब्रेड पर भी हरी चटनी लगाकर मिश्रण के ऊपर रखें। तैयार है आपका ककुम्बर दही सैंडविच। इसे आप चटनी और सॉस के साथ खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं, बच्चों को टिफिन में दें या ब्रेकफास्ट में खाएं। बहनों, कार्यक्रम को यही करते हैं समाप्त। समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार। अब समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज आप सुनेंगे तलत अजीज की गाई कुछ चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अभी आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और उसके उपरांत दोपहर समाचार।

0: कर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति

0: सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल STF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति

0: रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर का गायन। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग सिंध भैरवी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित अजय पोहनकर का राग सिंध भैरवी में गायन। अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज में राग मिश्र पहाड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। गायन में आज कलाकार थे पंडित अजय पोहनकर और राग था मिश्र पहाड़ी।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, पुराने गाने सिर्फ गाने नहीं होते, एहसास होते हैं। हर धुन किसी याद, किसी अपने और किसी खूबसूरत लम्हे से जुड़ी होती है। तो आइए इन यादों को फिर से जीते हैं इस बेहतरीन नगमे के साथ।

अभी आपने सुना फिल्म बाजार से। सुर थे लता मंगेशकर के और शब्द थे मीर ताकी मीर के और संगीत था खयाम का। अब पेश है हमारा अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म कुदरत से। किशोर कुमार की आवाज में शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था आरडी वर्मन का।

अभी आपने सुना कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया था फिल्म इज्जत से। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अब समय हो चला है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का। अंजुमन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुशायरा। प्रतिभागी शायर हैं मुश्ताक अहमद अंबर, डॉक्टर मुजीब उर रहमान शहजर, भरत दीप माथुर और मोहम्मद जाकिर शमशी शम्श।
1: सामेईन कराम, आज हम आपकी खिदमत में एक नहायत ही खूबसूरत महफिल मुशायरे के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज आलमी यौम दोस्ती यानी विश्व मित्रता दिवस है। आप सबको मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी आज की इस महफिल मुशायरा में मोहम्मद मुस्तकीम माहिर, जो फिरोजाबाद से तशरीफ लाए हैं, जनाब जाकिर शमसी साहेब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और आज के प्रोग्राम की सदारत हिंदुस्तान के मशहूर शायर और चित्रांशी के सेक्रेटरी जनाब भरत दीप माथुर साहेब फरमाएंगे और निजामत आपका खाकसार मुजीब शहजर। आइए दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूं और मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं मोहम्मद मुस्तकीम माहिर साहिब से एक शेर के साथ के दोस्ती से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं, सारी दुनिया को मेरी बात बताए कोई, अपने सीने से लगा लूंगा मैं उसको शहजर, दोस्ती को तो जरा हाथ बढ़ाए कोई।
2: वाह, मैं सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ
3: इरशाद अली
2: और गजल का मतलब पेश करता हूँ, मुलायजा करें। होशो

0: से बच गया।
1: और ये शेर मुलाहजा करें, ए दोस्त तेरा बारे मोहब्बत उठा के मैं,
2: ए दोस्त तेरा बारे

0: को लगाने से बच
1: गया।
0: मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलायजा करें। तूफान की जद में आ गए कश्ती के सारे लोग।
2: तूफान की जद में आ गए कश्ती के।
0: तूफान

0: जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तकीम माहिर रजा फिरोजाबादी साहेब, आपने जख्म की बात की, मरहम की बात की। मुझे जमील मजहर सयानवी साहेब के दो शेर याद आए कि हालात कभी घर के सड़क तक नहीं लाए, हम एक भी आंसू को पलक तक नहीं लाए, मलहम मरहम तो बड़ी बात है जख्मों को हमारे, तुम तो कभी भूले से नमक तक नहीं लाए। ये खूबसूरत शायरी हमने सुनी मुस्तकीम माहिर साहेब की। और अब हम एक बार फिर फिरोजाबाद की जानिब चलते हैं और जाकिर शमसी साहिब को दावत सुखन देते हैं। चार मिसरे उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि दोस्ती एक ऐसा तोहफा है जिसको मिल जाए खुश नसीब है वो, दोस्ती ऐसा एक जज्बा है जो हर एक दिल में पाया जाता है, जिसको मिल जाए अच्छे दोस्त यहाँ दर्द में भी वो मुस्कुराता है। मैं बुलाना चाहता हूँ जाकिर शमसी साहिब को जो फिरोजाबाद से तशरीफ लाए हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब, और आइए गजल का मतलब हाजिर करता हूँ सदर मोहतरम से ज्यादा चाहता हूँ।

0: बहुत
1: ये भी शेर बतौर खास मिला फरमाए, पांव अपने फैलाती जा रही है नफरत क्यों।
2: अच्छा,
0: बहुत अच्छा है।

और कहता हूँ अल्लाह फरमाए, शर का है अलग रस्ता, खैर का अलग रस्ता।

0: दोस्ती नहीं
1: दोस्ती
0: क्या कहना,
1: नहीं
0: क्या कहना, क्या कहना,
2: क्या कहने, वाह वाह वाह,
1: आग और पानी में
0: जाकिर शमसी साहब बहुत खूबसूरत
1: दोस्ती नहीं होती। जरा नवाजी और शेमला फरमाए, पास जिसके दौलत है उसकी होती है इज्जत, उसकी होती है इज्जत, अब जहां में कुछ कदरे आदमी नहीं होती, अब जहां में कुछ कदरे आदमी नहीं होती। और मकतम लाल फरमाए, वो भी

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत अच्छा है बहुत।
2: और हजरत एक मतलब दो तीन शेर मिला फरमाए, आपस का इंतशार नहीं ठीक दोस्तों।
0: वाह क्या क्या,
2: आपस

0: बहुत अच्छा
1: तो
2: बहुत
1: क्या
2: अच्छा,
1: कहने
2: अच्छा।
1: अरे वाह वाह,
0: नफरत का कारोबार नहीं ठीक दोस्तों। शुक्रिया, अल्लाह फरमाए कि आओ।

0: बहुत अच्छा,
1: ठीक
0: बहुत अच्छा, वाह वाह वाह वाह
1: दोस्तों
0: वाह वाह वाह
1: भाई,
0: वाह
1: बहुत बहुत
0: वाह,
1: शुक्रिया
0: बहुत उम्दा।
2: दोस्तों। ये थे जाकिर शमसी साहब, जिन्होंने आलमी योम दोस्ती के हवाले से बहुत खूबसूरत गजल पेश की, जिसकी रदीफ दोस्तों थी। उन्होंने एक और गजल खूबसूरत पेश की, जिसमें वो कहते हैं कि वो भी अब तो शायर हैं, वो भी शेर कहते हैं, जिनसे ठीक से जाकिर बात भी नहीं होती। आइए इस खूबसूरत कलाम के बाद मैं डॉक्टर मुजीब शहजर आपकी खिदमत में चंद शेर पेश करना चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूं।
3: इरशाद,
2: मजमून मेरी जात है ऐसी किताब का, मजमून मेरी जात है ऐसी किताब का, पोशीदा जिसमें राज है हर इंकलाब का। पोशीदा जिसमें राज है हर इंकलाब का, और शायद इशारा हो ये किसी इंकलाब का, शायद इशारा हो ये किसी इंकलाब का, देखा है बहता फूल नदी में गुलाब का, देखा है बहता फूल नदी में गुलाब का, और क्या रास उसको आती नहीं है सुहानी शाम, क्या रास उसको आती नहीं है सुहानी शाम, चेहरा जो सुर्ख होने लगा आफताब का, चेहरा जो सुर्ख होने लगा आफताब का, और एक तारा टूटकर मेरे दामन में आ गिरा,
0: एक तारा टूटकर
2: मेरे दामन में आ गिरा, जैसे हो कोई जुगनू शबे महताब का, जैसे हो कोई जुगनू शबे महताब का। और शेर पेश खिदमत है कि सारे जवाज मुझ में मिलेंगे तलाश लो, सारे जवाज मुझ में मिलेंगे तलाश लो, हालांकि मैं वरक हूँ शकिश्ता किताब का, सारे जवाब मुझ में मिलेंगे तलाश लो, हालांकि मैं वरक हूँ शकिश्ता किताब का, और दीवारें पुख्ता हो गई जब से मकान की, दीवारें पुख्ता हो गई जब से मकान की, लहजा भी तुर्श हो गया तब से जनाब का, दीवारें पुख्ता हो गई जब से मकान की, लहजा भी तुर्श हो गया तब से जनाब का, और शहजर जमाने वालों को शायद खबर नहीं, शहजर जमाने वालों को शायद खबर नहीं, होता नहीं जवाब किसी लाजवाब का, होता नहीं जवाब किसी लाजवाब का।
3: बहुत
2: बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया दोस्तों। दो चार शेर और पेश खिदमत है, उसके बाद मैं सदर मोहतरम की जानिब चलूंगा। एक मतला यूं कहा है

0: क्या बात है, क्या क्या बोले।
1: तोड़ कर सारे वफा आदमी,
2: बहुत अच्छा, क्या कहना,
0: बहुत
1: बहुत शुक्रिया। शेर पेशे खिदमत है,
2: इरशाद।
1: सांस भी अपनी मर्जी से लेता नहीं, सांस भी अपनी मर्जी से लेता नहीं, और

0: ने जब।
1: बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक और
0: वाह
1: शेर
0: वाह
1: पेश खिदमत है।
0: बताओ।
1: रास्ते उसके खुद मुंतजिर थे मगर,
0: रास्ते
1: वाह
0: उसके खुद
1: क्या अच्छा
0: मुंतजर थे
1: मिश्रा।
0: मगर।

0: रास्ते उसके खुद मुंतजर थे मगर।
1: और ये शेर भी देख ले जरा सा, नाजुक सा शेर मैंने कह दिया है
2: जी इरशाद।
0: जख्म जिसने दिए, दर्द जिसने दिया,
2: जख्म जिसने दिए।

0: बात है।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत।
0: जख्म जिसने दिए, दर्द जिसने दिया,
1: क्या कहना।
0: और दोस्तों, आज हम जिन चीजों की कदर नहीं कर रहे हैं, बेदरीक पानी बहा रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा जमाना ना आ जाए कि हम लोग अपने कांधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलने लगे
2: जी।
0: तो उस बात को जहन में रखते हुए मैंने एक शेर ये कहा है, एक पैगाम है। सामईन आपके लिए खूबसूरत पैगाम पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। देख

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: देखो अंजाम इसका
2: तबाही
1: न हो।
3: आइए सामईन कराम, इस खूबसूरत मुशायरा जो हमारे आकाशवाणी केंद्र आगरा से आज यौम दोस्ती पर नशर किया गया, इस खूबसूरत मुशायरे के सदर मोहतरम उर्दू शेर व अदब के एक नहायत ही मुनफरिद और खूबसूरत लहजे के शायर हैं, जिनको हम भरत दीप माथुर के नाम से जानते हैं। मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूं, उनसे दावत कलाम की दरखास्त करता हूं।

0: क्या कहने, वाह वाह वाह।
1: मैं बहुत मोहतरम जनाबे भरत दीप माथुर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम से सरफराज फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया। आदाब साबईन, सबसे पहले तो यौमे दोस्ती पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, चंद अशआर हाजिर करता हूँ। मतला अर्ज किया कि नाहक है परेशान तू बस बोल मेरे यार, नाहक है परेशान तू बस बोल मेरे यार, हाजिर है मेरी जान तू

0: बस बोल मेरे
1: अरे
0: यार,
1: क्या कहने,
0: नाहक है परेशान तू बस बोल मेरे यार, हाजिर है मेरी जान तू बस बोल मेरे यार, और अपनी पे जो आ जाए तो हम पल में बना दें, अपनी पे जो आ जाए तो हम पल में बना दें, सहरा को गुलिस्तान तू बस बोल मेरे
1: यार।
0: शेर यूं की लानत है जो पूरे न किए सारे के सारे, लानत है जो पूरे न किए सारे के सारे, क्या है तेरे अरमान तू बस बोल मेरे।
2: क्या बात है।

0: बोल मेरे यार, और किस तरह से लौटेगी लबों पर तेरे यखलक, किस तरह से लौटेगी लबों पर तेरे यखलक खोई हुई मुस्कान, तू बस बोल मेरे यार। एक शेर यूं कि दुनिया को तेरे सच पे यकीन आए ना आए, दुनिया को तेरे सच पे यकीन आए ना आए, मैं लाऊंगा ईमान, तू बस बोल मेरे यार। दुनिया को तेरे सच पे यकीन आए ना आए, मैं लाऊंगा ईमान, तू बस बोल मेरे यार। और हल हो ना कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, हल हो ना कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, सबका है समाधान, तू बस बोल मेरे यार। बहुत शुक्रिया। एक गजल से चंद अशआर और मैं गजल कर रहा हूँ। कहा कि कहीं से लोग बेसर आ रहे हैं,
1: बेसर आ रहे हैं,
0: कहीं

0: बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा मतलब। क्या बात,
1: कहीं से लोग बेसर आ रहे हैं। शेरियो कि कोई कह दो जरा मायूसियों से,
2: कोई कह दो जरा मायूसियों से।

0: कर
1: बहुत अच्छा इलाज किया है। क्या
0: उनके पर कतर कर आ रहे हैं कहीं से, ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाओ कि खुदा जाने ये कैसा ना खुदा है।
1: खुदा जाने ये कैसा ना खुदा।

रहे मेरी आँखों के अंदर आ रहे हैं कहीं से। और मख्ता गजल कि हजार

0: ये मजीद खूबी हो जाती है। इसके लिए हम भरतदीप माथुर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत गजल कही, कोई कह दो जरा मायूसियों से अबाबीलों के लश्कर आ रहे हैं। दोस्तों सामेईन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आकाशवाणी आगरा केंद्र से नशर किया गया, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। हमारे इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद मुस्तकीम माहिर रजा साहब शामिल थे, डॉक्टर जाकिर शमसी साहब शामिल थे, भरतदीप माथुर साहब ने सदारत फरमाई और मैं डॉक्टर मुजीब शहजर ने, आपके खादिम ने, इस मुशायरे की निजामत फरमाई। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया सर।
2: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन के तहत अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। प्रतिभागी शायर थे मुश्ताक अहमद अंबर, डॉक्टर मुजीबुर रहमान शहजर, भरतदीप माथुर और मोहम्मद जाकिर शमसी शम्स। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

0: हैं, बहुत शुक्रिया।
1: हजारों दीप जलते हैं वहां पर, वो जिन रस्तों से चलकर आ रहे हैं। भरत दीप माथुर साहब ने मक्ते पेश किया, बहुत खूबसूरत मक्ता, और इसमें एक सनत है, शायरी में एक खूबी रखी जाती है जिसको सनत सजा कहते हैं, यानी अगर शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है उस शेर में और अपने मानी के हिसाब से करता है तो

स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को है। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 और फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए की ग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने

0: दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोतागण 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा जल संचयन विधियां। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता विकास और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। वार्ताकार होंगे पुलकित देम्बा और नई पहल में आप सुनेंगे स्वयान पहल।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, जिसमें होगी चर्चा फसल चक्र की उपयोगिता पर। इसी कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा की वार्ता, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता। लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा हमारे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। साथ ही आप सुनेंगे शशि कुमार उपाध्याय से कानूनी वार्ता, श्रम कानूनों से श्रमिकों का कल्याण। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा वार्ता प्रेमचंद की रचनाओं में आधुनिकता के स्वर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर भारती पारिजात।

शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के

दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा 8:15 पर आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आनंद लीजिएगा फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम महफिले कव्वाली का, और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा करंट अफेयर्स और 10 बजे सुनेगा संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रैन 10:30 पर आकाशवाणी आगरा से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवाशीष चक्रवर्ती से राग रागेश्वरी में गिटार वादन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आज की संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, भक्ति बिना सुख नहीं और भक्ति बिना शांति नहीं, चाहे फिर ईश्वर हो या फिर देश। तो आइए सुरों और शब्दों की इस आराधना में डूबते हैं इस सावन के महीने में और लेते हैं शिव शंकर का नाम कार्यक्रम सुर संध्या में।

0: शिव शंकर का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। शिव शक्ति की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ से ये भक्ति रचना। आवाज और संगीत है अमित त्रिवेदी का और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे कार्यक्रम सुर संध्या।

शिवजी केवल आराधना का प्रतीक नहीं, बल्कि वो शक्तियां जो हमें सही राह दिखाती है। शिवजी के चरणों की धूल में ही भक्ति का सच्चा आनंद छुपा है। आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से एक गीत, लता मंगेशकर एवं साथियों की आवाजों में, जिसको लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

0: वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम संध्या में। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना, जो कि फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुखेंद्र सिंह की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

सूर्य संध्या यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना यूथ शो युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अपूर्वा परिहार। साथियों, चलिए आज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और घर के नल में पानी ना आए, ना चाय बन पाए, ना आप फ्रेश हो पाए, ना कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार हो सके, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दोस्तों, सच कहूँ तब हमें एहसास होगा कि पानी हमारी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है। लेकिन एक बात और सोचिए, जिस पानी को आज हम बिना सोचे यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है। कहीं सूखा, कहीं पानी की कमी, तो कहीं बारिश का इतना पानी कि सब बहकर निकल जाता है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं, और जहाँ पानी है वहाँ उसे संभालने के लिए सही प्लानिंग नहीं। इसलिए आज हम जानेंगे इस विषय में और बात करेंगे जल संचयन विधियां यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जिसका सिंपल सा मतलब है बारिश की हर बूंद को फ्यूचर के लिए सेव करना। दोस्तों, हम सबने बचपन से सुना है कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन पीने लायक साफ पानी बहुत कम है। और यही वजह है कि आज पानी बचाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन अब सवाल है, जल संचयन आखिर है क्या? हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, लेकिन दोस्तों इसको समझ बहुत कम लोग पाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके जरूरत के समय इस्तेमाल करना या उसे जमीन के अंदर पहुंचाकर भूजल बढ़ाना ही जल संचयन कहलाता है। यानी जो पानी हर साल बहकर चला जाता है उसे वेस्ट होने से बचाना। और इसे बचाने के एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में आसानी से अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी आपके घर या बिल्डिंग की छत पर जो बारिश का पानी गिरता है उसे पाइप की मदद से एक टैंक में स्टोर कर लिया जाए या फिर फिल्टर करके जमीन के अंदर भेज दिया जाए। इससे दो फायदे हैं, एक तो पानी सेव होता है, दूसरा भूजल का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है रिचार्ज पिट। नाम थोड़ा नया लगेगा लेकिन काम बिल्कुल सिंपल। जमीन में एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें रेत, बजरी और पत्थर डाले जाते हैं। बारिश का पानी उसमें जाता है और धीरे धीरे धरती के अंदर समा जाता है, यानी नेचर खुद पानी को स्टोर कर लेती है। ऐसे ही एक और तरीका है तालाब और पुराने जल स्रोतों का संरक्षण। दोस्तों, हमारे गाँव में पहले लगभग हर जगह तालाब हुआ करते थे, वहीं से सिंचाई भी होती थी और भूजल भी बना रहता था। अगर हम इन पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित करें तो ये आज भी हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और तरीका है जिससे आप पानी बचा सकते हैं, जिसका नाम है चेक डैम। ये छोटे छोटे बांध होते हैं जो बारिश के पानी की स्पीड को कम करते हैं। पानी धीरे धीरे रुकता है और जमीन के अंदर चला जाता है। इससे आसपास के कुएं और हैंडपंप भी लंबे समय तक पानी देते हैं। और अगर बात किसानों की करें तो खेत तालाब भी एक शानदार तरीका है। इससे बारिश का पानी खेत में ही जमा कर लिया जाता है और बाद में उसी पानी से सिंचाई की जाती है। इससे पानी की बचत भी होती है और खेती भी आसान हो जाती है। दोस्तों, आप जरा सोचिए अपने बारे में। हम में से हर कोई ये सोचता है कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर हम घर में नल खुला छोड़ना बंद कर दें, लीकेज ठीक करा दें, बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दें और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, युवा होने का मतलब सिर्फ बड़े होना

नहीं या बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करना भी है। आज का यूथ अगर जल संरक्षण को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले तो आने वाले समय में पानी की कमी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। कॉलेज में, सोसाइटी में या अपने गांव मोहल्लों में एक छोटी सी अवेयरनेस ड्राइव भी आपको बहुत बदलाव दिखा सकती है। साथियों, कहते हैं पानी की कीमत वही जानता है जिसे उसकी एक बूंद के लिए इंतज़ार करना पड़ा हो। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रॉमिस करें कि हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। जहाँ संभव होगा वहाँ जल संचयन अपनाएंगे और अपने दोस्तों, परिवार और समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि आज बचाया गया पानी कल की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए सेव वाटर, सेव फ्यूचर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। अब बारी है आपके आज के सवाल की, और आपका आज का सवाल इतना आसान है कि मुझे पूरा यकीन है आप में से ज़्यादातर श्रोता इसका सही जवाब देंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हिंदी और उर्दू साहित्य को अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से नई पहचान देने वाले एक महान कथाकार और उपन्यास सम्राट की जयंती हर साल आज ही के दिन यानी 31 जुलाई को मनाई जाती है। अब आप सोचिए हम किस महान साहित्यकार की बात कर रहे हैं, और साथ ही आनंद लीजिए इस गीत का।

तो दोस्तों, संगीत से पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि आज हम किस महान साहित्यकार की जयंती मना रहे हैं। उम्मीद है कि आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही उत्तर

0: ढूंढ लिया होगा। तो आइए बिना देरी करे जानते हैं इसका सही जवाब। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जयंती। जी हाँ, हर साल 31 जुलाई को हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और यथार्थवादी लेखन के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती आज मनाई जाती है। उनकी रचनाएं आज भी समाज को सोचने, समझने और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हम उन सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई देते हैं जिन्होंने इसका सही जवाब ढूंढ लिया। और अगर इस बार आपका जवाब गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे अगले कार्यक्रम में फिर मिलेगा आपको एक नया सवाल। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी के साथ। दोस्तों, आज विज्ञान और टेक्निक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार और रोजगार जैसे क्षेत्र में जहां विज्ञान ने विकास की नई राहें खोल दी हैं, वहीं देश की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा को भी अधिक मजबूत बनाया गया है। और ये केवल नई खोजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान को बेहतर और भविष्य को सुरक्षित बनाने का सशक्त माध्यम है। इसी विषय में दोस्तों आइए थोड़ा और जानते हैं वार्ताकार पुलकित देमला से, जो हमें बताएंगे विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में।
1: दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां हर पल हमारा जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ है। चाहे वह आपके दूर बैठे दोस्तों से वीडियो कॉलिंग करनी हो, नई शर्ट खरीदने के लिए हजारों ऑप्शन तराशने हो, शादी के लिए लड़का या लड़की पसंद करना हो, या अपने मन चाहे छोले भटूरों का जब मन करे तब आनंद लेना हो, आज ये सब कुछ हमारी पहुंच से बस कुछ क्लिक्स दूर है। और अगर आप थोड़े से आलसी हैं तो ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन पर वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब फर्ज करिए कि आप 2025 नहीं 1925, 50 या 2015 में जी रहे होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में से सारे कार्य नामुमकिन होते। यह कमाल है 21वीं सदी और खासकर पिछले 10 साल में हुए आविष्कारों का। आज अनेक क्षेत्रों में हुए विकास ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। रोजमर्रा के काम हो, बच्चों की परवरिश या पढ़ाई लिखाई, आर्थिक गतिविधियां, हमारी सुरक्षा हो या हमारी सेहत, हर जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दखल है। ये बदलाव हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज जेन AI टूल्स और AI चैटबॉट्स ज्ञान का अखबार या TV से कहीं बड़ा स्रोत है। म्यूजिकल ऐप्स पर आप अपना मन चाहा गीत कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, जो कि रेडियो पर असंभव है। इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से हमारे वातावरण के लिए कहीं गुणा लाभदायक हैं। और ये तो आज की स्थिति है। विकास की गति इतनी तेज है कि 10, 15 या 20 साल के बाद क्या हाल होगा, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से सीधा जुड़ा हुआ होता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हुए विकास हम सब के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए हैं। आज हमारे पास लगभग हर बीमारी, कैंसर, HIV, एड्स व सिकल सेल अनीमिया जैसे घातक बीमारियों का इलाज है। सभी को ज्ञात ही होगा कि COVID-19 के टीके का अनुसंधान रिकॉर्ड 1 साल में किया गया था। तुलना के लिए 19वीं शताब्दी में पोलियो का टीका लगभग 100 साल में, 20वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स 25 साल में व ट्यूबरक्लोसिस 13 साल में आया था। आज MRI, CT स्कैन, डायलिसिस जैसी फैसिलिटीज भारत के लगभग हर शहर में अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जो साफ दर्शाता है कि चिकित्सा विज्ञान में हमने कितनी प्रगति कर ली है। ये सब नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करने से ही संभव हो सका है। कहने का अर्थ ये है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हो, रक्षा अनुसंधान या सीमा निगरानी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो या आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा या स्मार्ट खेती, ऊर्जा सुरक्षा हो या परिवहन प्रणाली, और चाहे बात हो डिजिटल अर्थव्यवस्था या नवाचार की, आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। ये एक ऐसा दौर है जहां विकास और सुरक्षा दोनों ही इन दो स्तंभों पर मजबूती से टिके हुए हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति अब उसकी वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी नवाचार और शोध की संस्कृति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल, स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, विज्ञान ना केवल नई संभावनाएं खोल रहा है बल्कि मनुष्य और समाज की सुरक्षा का नया कवच भी बन रहा है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए विज्ञान और तकनीक अब अनिवार्य हो चुके हैं। साइबर सुरक्षा ढांचे, एन्क्रिप्शन तकनीक, AI आधारित निगरानी, सैटेलाइट संचार और आधुनिक रक्षा प्रणालियां राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर रही हैं। आपदा प्रबंधन में भी तकनीक एक बड़ी क्रांति ला रही है। मौसम पूर्वानुमान, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, भूकंप संवेदक और त्वरित अलर्ट सिस्टम लाखों लोगों की जान बचा रहा है। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी विज्ञान हमें समाधान दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर तकनीक और हरित नवाचार

0: भविष्य की सुरक्षा में अहम है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की पाकिस्तान के ऊपर विजय का सबसे प्रमुख कारण उत्तम और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही रहा। आज के दौर में सुरक्षा की परिभाषा केवल सैन्य क्षमता तक सीमित नहीं है, ये साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक फैली हुई है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति अब तकनीक आधारित हो चुकी है। स्मार्ट मिसाइलें, ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली, लेजर रक्षा तंत्र, सैटेलाइट निगरानी, ये सभी आधुनिक युद्ध के स्वरूप को बदल रहे हैं। भारत की लंबी सीमाएं जो पर्वतीय, समुद्री और रेगिस्तानी हैं, लगातार तकनीकी निगरानी से सुरक्षित हो रही हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की अवधारणा में सैनिकों, हथियारों और डेटा को वास्तविक समय में जोड़ने में विज्ञान की बड़ी भूमिका है। AI आधारित साइबर सुरक्षा सिस्टम आज डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने की रीढ़ बन चुके हैं। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय ड्रोन, रोबोट और AI आधारित विश्लेषण आपदा प्रबंधन में बेहद उपयोगी हो चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भविष्य की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर इन सभी स्तरों पर सुरक्षा को नई मजबूती और बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा अब केवल सेना का विषय नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की संरचना का हिस्सा बन चुका है। विज्ञान और तकनीक इन सुरक्षा आयामों को गति, बुद्धिमत्ता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। एक सुरक्षित राष्ट्र विकासशील और समृद्ध बन सकता है और इस दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल सुविधाओं का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और भविष्य का आधार है। विकास और सुरक्षा के दो पंख तभी मजबूत होंगे जब विज्ञान को प्रोत्साहन, अनुसंधान को समर्थन और नवाचार को अवसर मिलेगा। इसलिए विज्ञान में निवेश केवल आर्थिक निवेश नहीं बल्कि मानवता के बेहतर भविष्य में किया गया निवेश है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना वार्ताकार पुलकित देमला को। अब समय है हमारे कार्यक्रम के अगले खास हिस्से का, जिसका नाम है नई पहल। दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हर दिन कुछ नया सीखने और नई चीजों को समझने के मौके बढ़ रहे हैं। इन्हीं नई तकनीकों में से एक है ड्रोन टेक्नोलॉजी। कुछ समय पहले तक ड्रोन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ कैमरे से फोटो और वीडियो बनाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन आज ड्रोन का इस्तेमाल बहुत से महत्वपूर्ण कामों में किया जा रहा है। खेती में फसलों की निगरानी हो, किसी जगह का सर्वे करना हो, आपदा के समय मदद पहुंचानी हो या फिर नई तकनीकों पर काम करना हो, ड्रोन कई क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। इसी बढ़ती हुई तकनीक को समझने और युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी और कौशल देने के लिए शुरू किया गया स्वायान प्रोजेक्ट। दोस्तों, स्वायान प्रोजेक्ट का उद्देश्य युवाओं को ड्रोन और उससे जुड़ी तकनीक के बारे में सीखने का अवसर देना है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्र, शिक्षक और टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोग ड्रोन की कार्यप्रणाली, उसके निर्माण, इस्तेमाल और उससे जुड़ी नई टेक्निक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है बल्कि नई स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। ये पहल युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने में मदद करती है। साथियों, जरा सोचिए, आने वाले समय में ड्रोन कितने बड़े बदलाव ला सकता है। किसानों के लिए ये खेती को आसान बना सकते हैं, दूर दराज के इलाकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करेंगे और मुश्किल परिस्थितियों में राहत कार्य को तेज बना सकते हैं। यानी ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि नए अवसरों का एक रास्ता है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए जरूरी है कि वे बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट रखें और नई तकनीकों को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जो युवा आज नई चीजें सीखते हैं वही कल के नए अवसरों का हिस्सा बनते हैं। तो अगर आपके अंदर रुचि है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में, तो स्वायान प्रोजेक्ट जैसी पहल आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि हर नई सीख हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखाती है।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी। यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है किसी

0: अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, विज्ञान की दुनिया बहुत ही रोचक है। हमारे शरीर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते तो हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे रहस्य को कम ही जानते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज के बारे में, जिसका नाम है इंट्रॉन। दोस्तों, हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं यानी सेल्स भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर हमारी आनुवांशिक जानकारी यानी DNA मौजूद होता है। DNA को आप हमारे शरीर का एक तरह का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे शरीर के निर्माण और काम करने से जुड़ी कई जानकारियां छिपी होती हैं। अब इसी DNA में कुछ खास हिस्से होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। दोस्तों, जीन्स हमारे शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, लेकिन हर जीन का पूरा हिस्सा सीधे उपयोग में नहीं जाता। जीन के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो सीधे प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते। इन्हीं हिस्सों को इंट्रॉन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इंट्रॉन DNA के ऐसे हिस्से हैं जो जीन के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में इन्हें हटा दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर इंट्रॉन का कोई उपयोग नहीं है तो ये हमारे शरीर में क्यों मौजूद है। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इंट्रॉन भी शरीर में अपनी एक भूमिका निभाते हैं। ये जीन के काम करने के तरीके को नियंत्रित करने और जीवों में बदलाव और विकास की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। यानी इंट्रॉन भले ही सीधे प्रोटीन ना बनाते हों, लेकिन ये हमारे शरीर की जटिल प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, विज्ञान की यही खूबसूरती है कि जो चीज़ हमें छोटी या बेकार लगती है, वह भी प्रकृति की एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप DNA या जीन के बारे में सुने तो याद रखिएगा कि इनके अंदर मौजूद छोटे छोटे हिस्से भी जीवन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी रोचक जानकारी के साथ आज के वैज्ञानिकी सेगमेंट में इतना ही। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

चलते चलते युवाओं, बस इतना कहना चाहूंगी कि कूल बने लेकिन लापरवाह नहीं, क्योंकि असली स्मार्ट वही होता है जो अपने काम, पढ़ाई, सेहत और जिम्मेदारियों का ध्यान रखे। मस्ती कीजिए, खुश रहिए, लेकिन सोच समझ कर फैसले लीजिए। साथ ही हमें भी आज्ञा दें युवानी कार्यक्रम संपन्न करने का। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। प्रोग्राम प्रेजेंटर थी अपूर्वा परिहार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, हम जानते हैं कि खेती हमारे लिए केवल आज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक जिम्मेदारी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भूमि वर्षों तक अच्छी पैदावार देती रहे, तो हमें निश्चित रूप से खेती के ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो मिट्टी की सेहत को बनाए रखें। हम ये जानते हैं कि जब खेत में एक ही प्रकार के पौधों के समूह को उगाया जाता है, तो उसे हम फसल कहते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है साथियों, फसल चक्र। यानी एक ही खेत में हर मौसम में एक जैसी फसल बोने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलों को क्रम से लगाया जाए। सीधी सी बात है, यदि हम हर साल केवल गेहूं या केवल धान ही बोते रहेंगे, तो मिट्टी से वही पोषक तत्व बार बार निकलते रहेंगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरता कम होने लगेगी और उत्पादन भी घट जाएगा। लेकिन यदि गेहूं के बाद चना, मसूर, मूंग, उड़द या दूसरी दलहनी फसलें बोई जाएं, तो मिट्टी को फिर से पोषण मिलने लगता है। यही फसल चक्र का सबसे बड़ा लाभ है। दलहनी फसलों की जड़ों में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी में जमा कर देते हैं, और यही नाइट्रोजन अगली फसल के लिए प्राकृतिक खाद का काम करती है। इससे रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है और खेती की लागत भी घटती है। किसान साथियों, फसल चक्र अपनाने से केवल मिट्टी ही स्वस्थ नहीं रहती है, बल्कि कीट और रोगों का प्रकोप भी काफ़ी कम हो जाता है। जब एक ही फसल लगातार बोई जाती है, तो उससे जुड़े कीट और रोग भी तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जब फसल बदल जाती है, तो उनका जीवन चक्र टूट जाता है और उनका असर भी कम हो जाता है। इससे कीटनाशकों का खर्च घटता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। हम बात करें फसल चक्र की, तो दोस्तों, फसल चक्र का एक और बड़ा लाभ ये भी है कि खेत में खरपतवारों का नियंत्रण भी बेहतर होता है। अलग अलग फसलों की बढ़ने की प्रकृति अलग अलग होती है, इससे खरपतवारों को लगातार बढ़ने का अवसर नहीं मिलता और खेत साफ सुथरा बना रहता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कभी कम बारिश होती है तो कभी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे समय में फसल चक्र किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यदि किसी एक फसल में नुकसान हो जाए, तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकती है। इससे आय का नुकसान कम होता है और किसान आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, फसल चक्र अपनाने से पानी का भी बेहतर उपयोग होता है। इस बात को दोस्तों हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। धान जैसी अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल बोने से भूजल पर दबाव कम पड़ता है। इससे जल संरक्षण भी होता है और खेती अधिक टिकाऊ रहती है। वर्तमान समय में हमारे देश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन सभी पद्धतियों में फसल चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाता है, लाभदायक सूक्ष्म जीवों को सक्रिय रखता है और खेत की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में फसल चक्र अपनाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और उपलब्ध सिंचाई के अनुसार कृषि

विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। धान के बाद चना, गेहूं के बाद मूंग, मक्का के बाद सरसों या सोयाबीन के बाद गेहूं जैसी फसलें कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देती हैं। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सही फसल क्रम चुनना सबसे अधिक लाभकारी रहता है। अच्छी खेती का अर्थ साथियों केवल अधिक उत्पादन करना नहीं है, बल्कि मिट्टी, पानी और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए बेहतर भविष्य बनाने का भी काम है। फसल चक्र ऐसा ही सरल, सस्ता और वैज्ञानिक उपाय है जिसे अपना करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि भी सुरक्षित रख सकते हैं। वास्तव में हमें इन पंक्तियों का ध्यान रखना है कि मिट्टी का सम्मान करेंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे, धरती माँ की सेहत बचाकर समृद्ध किसान कहलाएंगे। और साथियों इसी बात पर चलिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर लोकगीत समवेत स्वर में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: साथियों, अल्प विराम के बाद आपका पुनः

0: स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ग्राम्य लोक में। अक्सर हमें अपने आसपास समाज में मारपीट, झगड़े आदि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। शराब पी कर के आना और घर की महिला पर घरेलू हिंसा करना जैसी बहुत सी बातें हम ग्रामीण इलाकों में भी देखते हैं। अधिकतर मामलों में ये व्यवहार साथी द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान समय में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ घरेलू हिंसा की बहुत खबरें आ रही हैं। किसी भी समाज के लिए ये घटनाएं बहुत गलत हैं और इनके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये उपयोगी वार्ता, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, आज हम बात करते हैं भारतीय समाज में होने वाली घरेलू हिंसा की। भारतीय समाज आदिकाल से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय व निम्न स्तरीय रही है। इसके अलावा शैक्षिक स्तर से भी महिलाएं हमेशा से पिछड़ी हुई रही हैं। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न सरकारों द्वारा महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं, फिर भी भारतीय समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा से अत्यधिक पीड़ित रही हैं। इन्हीं स्थितियों के कारण भारतीय समाज में महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा संसद में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक आदि दुर्व्यवहारों से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने साथ रहने वाले जीवन साथी के साथ कोई मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मानसिक उत्पीड़न, हिंसा आदि करता है, उदाहरण के लिए पति और पत्नी या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच, वयस्कों और बच्चों या वयस्कों और वृद्ध माता पिता के बीच हिंसा होना, इसके अलावा अन्य कुटुंबियों के साथ भी, जैसे चाचियां, मामा, चाचा, दादा, दादी, नाना, नादी, किसी के भी साथ हिंसा इसी के अंतर्गत आती है, तो पीड़ित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए छोटी आयु वाले बच्चों के लिए बाल सहायता लाइन 1800551800 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में 000 पर भी पुलिस को फोन कर सकते हैं। यदि आप रिश्तेदारी में घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, तो आप 1800732732 पर फोन करके आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को सूचित करके सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके तहत यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को आश्रय की आवश्यकता है या चिकित्सा की आवश्यकता है, तो अधिकारी पीड़ित को आश्रय व चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति 12DV के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को कोई भी आदेश पारित करने के लिए संरक्षण अधिकारी से एक रिपोर्ट मंगाकर उस पर विचार करना होगा। मजिस्ट्रेट सुनवाई करने से पहले दोषी व्यक्ति को सूचना भी दिलवाएगा तथा तामीला पूर्ण होने पर ही वह आगे के आदेश दे सकेगा। इसके पश्चात मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के लिए कई प्रकार के आदेश कर सकता है, जैसे दोनों पक्षों को परामर्श केंद्र भेज सकता है, जहां किसी अनुभवी परामर्शदाता द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करवा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि पीड़ित व्यक्ति का अनुरोध है कि वाद का कारण ऐसा है जिसे आम पब्लिक में नहीं सुनाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट कार्रवाई को बंद कमरे में चलाने का आदेश भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट संरक्षण के लिए भी आदेश दे सकता है, जैसे अगर पीड़ित व्यक्ति को किसी कार्यस्थल पर जाने से रोका जाता है, तो इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त बैंक खातों तथा लॉकरों को भी ऑपरेट करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति को उसके निवास स्थान से बेदखल किया जाता है, तो भी मजिस्ट्रेट उस स्थान पर निवास के लिए पीड़ित को संरक्षण देने का आदेश भी दे सकता है, जिसके लिए महिलाओं को घर से बाहर न करने और साझा मकान में रहने का आदेश भी जारी कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति अपनी संतान के लिए यदि वह उसके साथ निवास करती है, तो उसके भरण पोषण के लिए भी धन की मांग कर सकता है तथा अपने या बच्चों की चिकित्सा के लिए भी आवश्यक धन मांग सकता है।

0: जिसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। ये सब आदेश मजिस्ट्रेट अपनी समझ के अनुसार पीड़ित पक्ष को देखते हुए करते हैं। मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर संतान को उसके साथ रखने की अनुमति भी प्रदान कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को उसकी मानसिक, भावनात्मक तथा यातना के एवज में विपक्षी से क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिलाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को एक पक्षीय आदेश देने की भी शक्ति प्राप्त है। यदि विपक्षी लगातार सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहता है तथा अपना कोई भी पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए विपक्षी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश भी जारी कर सकता है। आमतौर पर घरेलू हिंसा को सुलझाने के लिए 6 माह से 3 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि कानूनन अंतरिम राहत जैसे गुजारा भत्ते का फैसला 1 से 3 माह के भीतर हो जाता है, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में लंबित मामलों में अंतिम फैसला आने में काफी समय लग सकता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे शिक्षा और जागरूकता, कड़े कानून और उनका सख्ती से पालन तथा संवाद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। इसके अलावा संकट के समय पुलिस को 112 नंबर तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर भी कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। अंत में सारांशतः यही कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत आवश्यक है। हालांकि आजकल महिला शिक्षा पर सरकार बहुत जोर दे रही है तथा हमारे देश की महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्मी हो, स्पोर्ट्स हो, व्यापार, किसानी, शिक्षा आदि क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं तथा उनकी इस जागरूकता के कारण वे घर से निकलकर कोर्ट कचहरी तक अपने अधिकारों की मांग रख रही है, जिसका ज्ञान हमें अदालतों में बढ़ रही दावों से भी होता है। लेकिन पुरुष वर्चस्व के कारण आज भी समाज में विसंगतियां हैं। इसको दूर करने के प्रयास सामाजिक स्तर पर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा में कमी आ सके।
1: साथियों, अभी आपने ये महत्वपूर्ण वार्ता सुनी, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता। वार्ताकार थे डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा। हमें उम्मीद है कि आपने वार्ता को ध्यान से सुना होगा और आप इसका अवश्य लाभ लेंगे। साथियों, समय समय पर हम कृषि के क्षेत्र में तकनीकी द्वारा होने वाली प्रगति के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। गोवा स्थित ICAR केंद्रीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक मशरूम उगाने के बाद बचने वाले कचरे को किसानों के लिए लाभकारी बनाने में जुटे हैं। मशरूम की खेती के बाद जो मिश्रण बचता है उसे स्पेट मशरूम सब्सट्रेट कहा जाता है। वैज्ञानिक अब इसी बचे हुए मिश्रण से जैविक खाद तैयार कर रहे हैं, जिसे स्पेट मशरूम सब्सट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर नाम दिया गया है। इस जैविक खाद का परीक्षण धान और सब्जियों की फसल पर किया जा रहा है। ये पहल खेतों से निकलने वाले जैविक कचरे के सही प्रयोग को बढ़ावा देगी। इससे किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होगी। ICAR के खेत बचाओ अभियान के तहत ये अध्ययन संतुलित खाद के इस्तेमाल और मिट्टी की सेहत सुधारने की मुहिम से जुड़ा हुआ है। इसमें खेती के कचरे को उपयोगी जैविक खाद के रूप में बदला जाएगा। और साथियों, अब समय है मंडी भाव की जानकारी का। अरहर दाल 9,800 रुपये से 10,100 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2,700 रुपये से 2,775 रुपये प्रति कुंतल, मूंग दाल 9,600 रुपये से 9,800 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल 7,600 रुपये से 7,800 रुपये प्रति कुंतल, सरसों 6,550 रुपये से 6,800 रुपये प्रति कुंतल, जौ 2,400 रुपये से 2,450 रुपये प्रति कुंतल, साबुत चना दाल 8,600 रुपये से 8,700 रुपये प्रति कुंतल, साबुत मूंग दाल 8,700 रुपये से 9,050 रुपये प्रति कुंतल। तो ये तो थे मंडी भाव। और अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। कभी कभी आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी का असर देखा गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और साथियों, फिर से चलते हैं लोकगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये मधुर लोकगीत डॉक्टर शशि तिवारी के

और दोस्तों, डॉक्टर शची तिवारी के गाए हुए इस मधुर लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अनुमति दीजिए आप सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

श्रमिक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ संतोष वर्मा। नमस्कार। बारिश का मौसम है दोस्तों, भीगने भिगोने का मौसम तो है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने का भी मौसम है, ताकि हम बीमार ना पड़ें और किसी दुर्घटना की चपेट में ना आ जाएं। हमारी रोज़ की ज़िंदगी वैसे भी मेहनत से भरी है, अगर बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होंगे तो परिवार की देखभाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपसे यही कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो मेहनत कर पाएंगे और आसपास की परिस्थितियों के प्रति, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह पाएंगे। दुनिया में हर तरह के लोग हैं दोस्तों, जलने वाले, बुरा चाहने वाले हैं, तो अच्छे लोग भी हैं जो श्रमिकों का, श्रम शक्ति का सम्मान करते हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनकी मेहनत को दुनिया के सामने लाते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। किसानों, मजदूरों के जीवन संघर्षों और सामाजिक कुरीतियों की बात करने वाले ऐसे ही एक महान साहित्यकार हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचनाएं आज भी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने अपनी कलम से हम जैसे साधारण और मेहनतकश लोगों का दर्द, उनकी खुशियाँ और आवाज़ को दुनिया के सामने रखा। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। अपनी रचनाओं में वे ब्रिटिश भारत में लोगों की दुर्दशा बयां करते। इससे अंग्रेज़ों ने उनकी कई कृतियाँ प्रतिबंधित कर दीं और उनके लिखने पर रोक लगा दी। इसीलिए उन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपनी रचनाएं लिखीं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका बचपन बड़ी मुश्किलों और अभावों में बीता। छोटे थे तभी उनके माता पिता नहीं रहे। कम उम्र में ही उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गईं। आर्थिक कठिनाई इतनी थी कि पढ़ाई जारी रखना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई, यही उनका जीवन बन गया। मेहनत से पढ़ाई की और अध्यापक बन गए, पर जल्दी ही नौकरी छोड़कर पूरी तरह से साहित्य सेवा में जुट गए। जो खुद संघर्ष की आग में तपता है, वही दूसरों के दर्द को सही मायनों में समझ सकता है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने महलों और अमीरों की कहानियाँ नहीं लिखीं, उनकी कहानियाँ लिखीं जिनके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं। किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, नौकर, गरीब परिवार, महिलाएं और समाज के वंचित लोग, ये सब उनकी कहानियों के नायक बने। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यास और ईदगाह, पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा जैसी अमर कहानियाँ हैं। कहानी पूस की रात मेहनतकश किसान के संघर्ष का प्रतीक है। गोदान का होरी हर उस श्रमिक का चेहरा है जो ईमानदारी से मेहनत करता है और परिस्थितियों से लड़ता है। ईदगाह का हामिद त्याग, संवेदना और परिवार के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाता है, तो वहीं नमक का दरोगा ईमानदारी और सिद्धांतों पर अडिग रहने की कहानी है। इसी तरह के झकझोर देने वाले उनके और भी उपन्यास और कहानियां हैं। आज के समय में दोस्तों, जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी प्रेमचंद जी का साहित्य हमें यही याद दिलाता है कि इंसानियत, ईमानदारी, परिश्रम और संवेदनशीलता कभी पुराने नहीं हो सकते। मशीनें तेज हो सकती हैं, तकनीक बदल सकती है, लेकिन मनुष्य के श्रम और सम्मान का कोई विकल्प नहीं। इसीलिए आज प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर हमें भी अपने कार्य व्यवहार को अच्छा बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए, यानी ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत का सम्मान करेंगे और अपने अधिकारों के जरिए जीवन को बेहतर बनाएंगे। हर देश की ताकत दोस्तों वहाँ की श्रम शक्ति है। इसीलिए जो देश अपने मेहनतकशों

मुक्ता सिकंदर से आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

0: का ध्यान रखते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में भी श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों में शामिल हैं देश के श्रम कानून। इसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं शशि कुमार उपाध्याय जी से, सुनते हैं उनकी वार्ता श्रम कानूनों से श्रमिकों का कल्याण।
1: श्रोताओं, कहते हैं हाथों में छाले हैं पर चेहरे पर मुस्कान है, मजदूर के ही दम पर थमा ये जहान है। सींचता है वो खून पसीने से हर एक ईंट को, उसी के हौसलों से खड़ी हर ऊंची उड़ान है। श्रोताओं, ये बात सही है कि हमारे देश के विकास की धुरी किसानों और श्रमिकों की मेहनत पर टिकी है। श्रमिक भाई बहनों द्वारा असंभव कार्य को भी संभव बनाया जाता है। उनकी मेहनत और लगन प्रतिदिन हमारे देश के विकास की राह दिखाती है। देश में लाखों श्रमिक भाई बहन हैं, तपती धूप में, कड़ाके की सर्दी में, भरी बरसात में अपने कार्यों को अंजाम देने से कभी पीछे नहीं हटते। श्रोताओं, श्रम का अर्थ है मेहनत, और जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से मेहनत करके समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। देश की प्रगति केवल बड़ी बड़ी मशीनों या रुपयों से नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाले श्रमिक भाई बहनों के हाथों से होती है। श्रमिक वर्ग समाज का एक ऐसा अटूट अंग है जो खुद कठिनाइयों में रहकर दूसरों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतें, कारखाने, रेलवे ट्रैक, बांध, सड़कें, पुल और छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु श्रमिक भाई बहनों के पसीने से सींची गई है। यही नहीं, हमारे शहरों को साफ सुथरा रखने और बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देने में श्रमिक वर्ग बुनियादी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। श्रमिक भाई बहनों, इन समस्याओं को दूर करने के लिए और उनका अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा श्रमिक भाई बहनों के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों से श्रमिकों को उनके अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान और श्रम कानूनों के तहत श्रमिक भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी, तय कार्य 8 घंटे और कार्य स्थल पर सुरक्षा जैसे अधिकार दिए गए हैं। सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल जैसी सुविधाएं चलाई जा रही हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा तैयार करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा सके। भारत में श्रम कानून नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के संबंधों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। भारत सरकार ने पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए श्रम कोड बनाए हैं, जिनमें सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ उन्हें समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित करता है तथा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं को आसान बनाता है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन नियमों के तहत कंपनियों और ट्रेड यूनियनों के विवादों को सुलझाने और छटनी के नियमों को भी तय किया जाता है। यही नहीं, श्रोताओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा और साफ सफाई और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करता है। श्रमिक भाई बहनों की मेहनत, उनके कठिन परिश्रम, पसीने और समर्पण के बिना किसी भी समाज, उद्योग या राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना करना असंभव है। खेतों में अनाज उगाने वाले किसानों से लेकर गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले राजमिस्त्री, कारखानों में दिन रात काम करने वाले मजदूर भाई और सड़कों को साफ रखने वाले सफाई कर्मचारी, ये सभी हमारे समाज के सच्चे शिल्पकार हैं। श्रोताओं, इस अधिनियम के अंतर्गत नौकरी शुरू करते समय नियोक्ता को लिखित नियुक्ति पत्र कानूनी रूप से श्रमिक भाई बहनों को देना अनिवार्य किया है। 1 हफ्ते में 48 घंटे का काम करने के नियम में आप तय समय से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। आपको नियोक्ता द्वारा 2 गुनी दर से ओवर टाइम मिलने का भी प्रावधान है। श्रमिकों के साथ साथ इस अधिनियम में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार है। महिलाएं रात की पाली में एक ही शर्त पर काम कर सकती हैं। वो शर्त है कंपनी

0: उनकी सुरक्षा और आने जाने का पूरा इंतजाम करें। इसके अलावा 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जा सके। श्रोताओं, यदि किसी श्रमिक भाई बहन के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे समय पर वेतन नहीं मिलता है, नियोक्ता द्वारा बिना वजह नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो वे कंपनी के HR या आंतरिक शिकायत समिति में अपना लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समाधान न होने पर अपने क्षेत्र के श्रम विभाग या लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा श्रमिक भाई बहनों के हित में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में श्रमिकों के बच्चों को भी समाज के अन्य बच्चों की तरह निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। तमाम अधिनियम श्रमिक भाई बहनों के हक में इस तरह के पारित किए गए हैं जिनमें श्रमिक भाई बहनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और अपना व अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकें। श्रोताओं, हमें श्रमिक भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए और उनकी मेहनत को पहचानना चाहिए तथा श्रमिक भाई बहनों के योगदान को सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश जरूर रंग लाएगी।
1: श्रम कानूनों से श्रमिकों का कल्याण। श्रमिक दोस्तों, अभी हम शशि कुमार उपाध्याय जी से ये वार्ता सुन रहे थे जिसमें हमने श्रम कानूनों के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहेंगे और किसी भी शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। कार्यक्रम के शुरू में हम इसीलिए कह रहे थे दोस्तों कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हर बात पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जागरूक रह पाएंगे। तो यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो कभी उसकी अनदेखी ना करें। जागरूक रहकर और कुछ विशेष बातों पर ध्यान देकर हम कई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा साफ़ पानी ही पिएं और ताज़ा गर्म भोजन करें। शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखें और रोज़ सूखे साफ कपड़े पहनें। यदि हल्की खांसी या गले में खराश हो तो भाप लेनी चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। खांसी से बचाव के लिए तंबाकू से दूर रहें और धूल या धुएं में काम करते वक्त मास्क लगाएं। काम के बीच में या बाद में थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ खाने से या पानी में सत्तू घोलकर पीने से कम खर्च में शरीर को तुरंत ताकत मिलती है। इसी तरह सुबह काम पर निकलने से पहले अंकुरित चने मूंग में थोड़ा सा नमक और नींबू मिलाकर इसका सेवन करें तो इससे पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज़ या गैस की समस्या भी नहीं होती। तो श्रमिक दोस्तों, ये तो थे कुछ सेहत टिप्स। और अब कार्यक्रम में आपके लिए आज का प्रश्न, आपको बताना है उस महान पार्श्व गायक का नाम जिन्हें हर भाव की आवाज़ का नाम दिया गया है। आज भारतीय सिनेमा के इस हरदिल अजीज गायक की पुण्यतिथि भी है। कौन है ये महान गायक, हम जानते हैं, आपको पता है, और अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम मजदूर मंडल।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल और कार्यक्रम में ज्ञान सागर में। आइए अब बात करते हैं शहीद उधम सिंह जी के बारे में। आज उनके शहीदी दिवस पर, उधम सिंह जी के बचपन का नाम शेर सिंह था, जिनका जन्म ब्रिटिश भारत में लाहौर के पास सुनाम के पिलवाद में हुआ था। उनके पिता टहल सिंह एक मजदूर थे और जब उधम सिंह जी की उम्र केवल 3 वर्ष थी तभी उनकी माँ गुजर गईं। 5 साल बाद पिता भी चल बसे। उधम सिंह और उनके बड़े भाई चाचा के साथ रहना चाहते थे, पर वे भी आर्थिक शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, इसीलिए दोनों को अनाथालय में भेज दिया। यहीं उनका नाम शेर सिंह से उधम सिंह हुआ। प्यार से अनाथालय में लोग उन्हें उदे कहा करते थे। यहाँ से निकलकर वह ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए, लेकिन सैन्य अधिकारियों से उनकी बनी नहीं। हालांकि सेना ने उन्हें बड़ईगिरी और मशीनों वाहनों की मरम्मत के लिए बगदाद भेज दिया, पर तब तक वे समझ चुके थे कि ब्रिटिश सेना की नौकरी करना देश के प्रति गद्दारी करने जैसा है। इसीलिए सेना छोड़कर वतन लौट आए और उसी अनाथालय में रहने लगे। फिर आया 13 अप्रैल 1919 का, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का वह आंसुओं में डूबा हुआ दिन, जब अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले ली। उस दिन जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, वैसाखी पर्व के कारण भी वहां भीड़ थी। उधम सिंह जी वहीं मौजूद थे और अपने साथियों के साथ लोगों को पानी पिला रहे थे। तभी जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने भारतीयों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया, कुछ गोलियों से, कुछ भीड़ में दबकर मर गए और बहुत से लोगों ने गोलियों से बचने के लिए सूखे कुएं में छलांग लगा दी और उनकी जान चली गई। हजारों लोग घायल हुए, जिनमें उधम सिंह जी और उनके साथी भी थे। मरने वालों में माओं के सीने से चिपके दुधमुहे बच्चे, जीवन की संध्या बेला में आज़ादी का सपना देख रहे बुजुर्ग और देश के लिए सर्वस्व लुटा देने वाले युवा सभी शामिल थे। इस घटना ने उधम सिंह जी को हिलाकर रख दिया। उस भयानक मंजर को देखकर उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लिया और संकल्प किया कि वे इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे और जनरल डायर को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन बदला लेना कोई आसान काम नहीं था। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने छिपकर अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्राएं कीं। वे एक सक्रिय क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी से जुड़े थे। 1927 में भगत सिंह के कहने पर वह भारत लौट आए। अपने साथ 25 साथी, रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए, पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया। जेल से रिहा हुए पर नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए वे इंग्लैंड चले गए और वहां डायर को मारने की योजना बनाने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद सन 1940 में उन्हें मौका मिला। लंदन में एक मीटिंग में भाग लेने आए वक्ताओं में जनरल डायर भी था। अपनी किताब में छिपाकर ले जाई गई रिवॉल्वर से उधम सिंह जी ने डायर को 2 गोलियां मारी, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। उधम सिंह जी ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तार करा दिया। इस हत्या के लिए 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी शहादत देकर हमेशा के लिए अमर हो गया। 31 जुलाई 1974 को उनकी अस्थियां सम्मान सहित भारत लाई गईं। उनके गांव में उनका समाधि स्थल बनाया गया, जहां आज भी देशभक्त उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं।

0: उन्हें शहीद आज़म की उपाधि दी गई और उनके नाम पर ऊधम सिंह नगर भी है। उनको समर्पित अमृतसर में एक संग्रहालय बनाया गया है और उनके घर को भी संग्रहालय का रूप दिया गया है। उन पर साहित्य भी रचा गया और उनके जीवन पर फिल्में भी बनी। आइए इस महान क्रांतिकारी को नमन करते हुए हम यह संकल्प लें कि अपने देश, अपने समाज और अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे, अपने श्रम को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी देश प्रेम, कर्तव्य और ईमानदारी की सीख देंगे।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रमिक दोस्तों, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और अब दोस्तों, कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्न का जवाब। प्रश्न था कि वो बेहतरीन पार्श्व गायक कौन हैं जिन्हें हर भाव की आवाज़ कहते हैं और जिनकी आज पुण्य तिथि है। तो इसका जवाब है दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब। उनकी जादुई आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब दुनिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी जब हम उनके गाने सुनते हैं तो उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं। भजन हो, देशभक्ति गीत हो, गज़ल, कव्वाली या प्रेम गीत, हर शैली में उन्होंने गाने गाए और अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसीलिए उनकी आवाज़ को कहा गया हर भाव की आवाज़। प्रेम और सम्मान से उन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहते हैं। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। और अब बारी है दोस्तों आज की पाती की, तो लेते हैं ये पत्र जो आया है फिरोजाबाद से, और लिखने वाले हैं राम किशोर जी। लिखते हैं, रोज़ मेहनत करके परिवार का पालन करते हैं, दिन भर की थकान के बाद जब मजदूर मंडल सुनते हैं तो मन को नई ऊर्जा मिलती है। कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारी और प्रेरक बातें हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मेहनत करने वाला बड़ा होता है या धन संपत्ति वाला। तो मैंने उससे कहा कि मेहनत करने वाला ही बड़ा है, क्योंकि उसी के श्रम से घर भी चलता है और देश भी। आपसे अनुरोध है कि कोई प्यार भरा गीत सुनवा दें। रामकिशोर जी, पत्र के लिए और कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बेटे को जो सीख दी है वही हमारे देश के बच्चों को मिलनी चाहिए। आपकी इस भावना का हम सम्मान करते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रमिक दोस्तों, समय हो गया है कि आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न किया जाए। तो मुझे यानी संतोष वर्मा को अब इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, प्रस्तोता थे संतोष वर्मा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल

0: decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80-kilogram semi-final. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर भारती पारिजात से वार्ता। वार्ता का विषय है प्रेमचंद की रचनाओं में आधुनिकता के स्वर।
2: मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा जगत के कालजयी रचनाकार हैं। कालजयी इस संदर्भ में कि आज 21वीं शताब्दी में भी उनकी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखी गई रचनाएं उतनी ही सामयिक हैं, प्रासंगिक हैं और चिंतन से परिपूर्ण हैं। प्रेमचंद का रचना संसार नवीन से भी नवीनतम, आधुनिक से भी अधुनातन है। प्रेमचंद जी की स्पष्ट मान्यता थी कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। स्पष्ट है कि विकासोन्मुख मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाकर भावी संभावनाओं के प्रति विश्वास जागृत करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। यही कारण है कि आधुनिक साहित्य के नए से नए कथ्य, शिल्प, प्रवृत्ति, संवेदना सभी के दर्शन प्रेमचंद जी की रचनाओं में होते हैं। आधुनिक साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता है संवेदना का यथार्थ परख होना। श्री प्रेमचंद का हर कथानक उनकी संवेदन क्षमता की मुखर कथा है। विशिष्ट विपरीत परिस्थितियों में अबोध बालक भी बड़ों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ऐसा प्रायः देखा जाता है। यह जीवन सिद्ध अनुभव ईदगाह कहानी में दृष्टिगोचर होता है। इस कहानी में हामिद नामक बच्चा नानी के दिए पैसों से पूरे मेले में से कोई भी खिलौना नहीं खरीदता। खरीदता है तो लोहे का एक चिमटा, ताकि रोटी बनाते समय नानी का हाथ नहीं जले। आधुनिक कही जाने वाली किसी भी कहानी से ईदगाह कहानी का संवेदनात्मक पक्ष किसी भी तरह 19 नहीं है। उन्होंने कुल 224 कहानियों की रचना की और सभी का अंत मानवीय संवेदना में हुआ है। यही आधुनिकता का उन्मेष है। सांकेतिकता एवं चिंतन उद्वेलन आधुनिक साहित्य की दूसरी वह पहचान है जो प्रेमचंद साहित्य में बहुतायत में मिलती है। पूस की रात और कफन कहानी इसका प्रमाण है। जहां कहानी का अंत प्रश्न बनकर उपस्थित होता है, वहीं प्रश्न का उत्तर भी उसी प्रश्न में समाहित है। मुन्नी को चिंता है कि पूस की रात कंबल के बिना कैसे कटेगी, और हल्कू की निश्चिंतता है कि खेत चले जाने पर कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। रचना प्रक्रिया की यह आंतरिक संगति आधुनिकतमवादी सोच की उपलब्धि है। इसी तरह उनकी कफन कहानी का अंत व्यंग व संयम की पराकाष्ठा है। उससे उत्पन्न आक्रोश उस आधुनिक चिंतन की देन है, जहां शिल्प गौड़ रह जाता है और कथा की आत्मा मुख्य हो जाती है। कफन कहानी को प्रेमचंद साहित्य की क्रांतिकारी घटना कहते हुए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा था, कफन में जीवन का नग्नतम यथार्थ अट्टहास कर उठा है। न जाने कब के भूखे प्यासे, आशान्वित व दुखी माधव और घीसु जब बुधिया के लिए मेरे पैसों से बाजार में 5 रुपए का कफन लेने जाते हैं, तो वहाँ अपनी सारी झूठी मर्यादाओं मान्यताओं को भूलकर अपनी आत्मा की यथार्थ भूमि पर उतर पड़ते हैं। यही यथार्थ प्रेरित उत्कंठा उनके नारी पात्रों की अवधारणा में दृष्टिगोचर होती है। जिस तरह से आधुनिक साहित्यकारों ने नारी को वायवी या असाधारण न मानकर साधारण नारी के रूप में चित्रित करते हुए भी उसकी असाधारण कार्य क्षमता का रेखांकन किया है, उसी प्रकार प्रेमचंद के रचना संसार की नारी।

0: भी धरती पर पैर टिकाकर आकाश को स्पर्श करती हैं। उनकी रचनाओं में विविध वर्गों की विभिन्न स्वभाव वाली नारियों को स्थान मिला है। स्वावलंबी एवं स्वतंत्र विचारों की गोदान उपन्यास की मालती और कृषक पत्नी धनिया दोनों ही नारी के दो रूपों की प्रतीक हैं। नारी स्वातंत्र के संबंध में प्रेमचंद जी के विचार थे कि भारतीय नारी को पश्चिम का अंधानुकरण न करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। उनके उपन्यासों के कितने ही नारी पात्र गृहस्थ और समाज सेविका या राष्ट्र सेविका दोनों भूमिकाएं साथ साथ निभाते हैं। प्रेमाश्रम की श्रद्धा, गबन की जालपा और रतन या वरदान की विरजन ऐसी ही नारियां हैं। वर्तमान सांप्रदायिक झगड़ों के लिए भी प्रेमचंद की सोच आधुनिक है। उनकी बहुत सी कहानियों में हिंदू मुस्लिम पात्रों में घनिष्ठ मित्रता है। के रुपए कहानी में नईम और कैलाश अलग अलग धर्मों के होते हुए भी घनिष्ठ मित्र हैं। कायाकल्प में कुछ स्वार्थी लोगों का दंगा भड़काना आज के स्वार्थी तत्वों का स्मरण करा देता है। आज के भारत के लिए कायाकल्प उपन्यास के यशोदा नंदन की पत्नी का कथन अनुकरणीय है। भारतीय संदर्भ में इधर साहित्यिक परिपेक्ष्य में जो एक नई किंतु दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है वह है दलित विमर्श की। वैसे तो साहित्य को दलित और सवर्ण खेमों में बांटना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु जब प्रश्न ये उठाया जा रहा हो कि दलित समस्याओं पर साधिकार लेखन केवल दलित साहित्यकार को ही है, वहां यह बताना उपयुक्त होगा कि वर्तमान विषमताओं को वाणी देने वाले रचनाकार मुंशी प्रेमचंद ही थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें दीन दलितों का जबरदस्त वकील कहा करते थे। मंदिर, सदगति, मंत्र, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, कफन आदि में दलित जीवन की तिक्त संवेदना को अभिव्यक्ति देने वाली कहानियां हैं। आज विश्व स्तर पर एकात्म भाव की स्थापना के प्रयास हो रहे हैं। प्रेमचंद जी ने लगभग 60 वर्ष पूर्व ही इस भूमंडलीकरण की परिकल्पना कर ली थी। उनका स्वप्न था कि मजहब का दौर तो खत्म हो रहा है, बल्कि यूं कहो कि खत्म हो गया। आखिर दो एक सदी के बाद दुनिया में एक सल्तनत हो जाएगी। सच तो ये है कि प्रेमचंद जी के कथानकों में तो आधुनिकता के स्वर मुखरित हैं ही, आसपास के परिवेश को भी गुंजित करने की सामर्थ्य उनमें विद्यमान है। 1936 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हंस के प्रेमचंद विशेषांक में प्रेमचंद जी को साहित्य जगत का नीलकंठ मानना उनके अथक प्रयासों की सार्थकता को उद्घोषित करता है। उन्होंने शिव के समान ही परिस्थितियों की प्रतिकूलता का विष पीकर साहित्य का अमृत योग समाज और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया और इस पर प्रश्न चिन्ह कदापि नहीं लगाया जा सकता।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर भारती पारिजात की वार्ता। वार्ता का विषय था प्रेमचंद की रचनाओं में आधुनिकता के स्वर। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो के

चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित

0: इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
2: कांवर यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उस पे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश।

उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये
2: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्रिय श्रोताओं और साथियों को आपके रेडियो होस्ट यानी कि मैं सागर जग्गी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जहां हम बात करते हैं भारत की उस गौरवशाली मिट्टी की जिसने अनेक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और सृजन से देश की आत्मा को नई दिशा दी। ऐसे ही महान साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद, जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाई जाती है। श्रोताओं, वे केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि भारतीय समाज के संवेदनशील चित्रकार, जनमानस की आवाज और सामाजिक चेतना के सशक्त प्रवक्ता थे।

श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निकट स्थित लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत नवाब राय नाम से की, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुए। बचपन आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक संघर्षों में बीता, लेकिन शिक्षा और साहित्य के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। प्रेमचंद का जीवन हमें यह सिखाता है, श्रोताओं, की कठिन परिस्थितियां किसी व्यक्ति की प्रतिभा को रोक नहीं सकती। उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया, फिर सरकारी नौकरी भी की, लेकिन जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया।

0: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोता, हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। श्रोता, उनकी लेखनी का सबसे बड़ा गुण था यथार्थवाद। उन्होंने कल्पनाओं की दुनिया नहीं रची बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की। उनके उपन्यासों और कहानियों में किसान, मजदूर, स्त्रियां, दलित, गरीब और समाज के अपेक्षित वर्गों का जीवन पूरी संवेदनशीलता के साथ दिखाई देता है। उन्होंने उन लोगों की आवाज को शब्द दिए जिन्हें अक्सर समाज अनदेखा कर देता था। यदि प्रेमचंद की साहित्य की चर्चा हो और गोदान का नाम ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। यह उपन्यास भारतीय किसान के संघर्ष, आशाओं और पीड़ा का जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन जैसे उपन्यास आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। उनकी कहानियां भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ईदगाह में छोटे से हामिद का अपनी दादी के प्रति प्रेम हो, पूस की रात में किसान हल्कू की विवशता, खफन में सामाजिक विडंबना, दो बैलों की कथा में पशुओं के माध्यम से मानवीय संवेदना या पंच परमेश्वर में न्याय की महत्ता, हर कहानी जीवन का कोई ना कोई गहरा संदेश देती है।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ, जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

श्रोताओं, प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा देने वाला साहित्य था। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, दहेज प्रथा, शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानताओं पर खुलकर लिखा। उनका विश्वास था कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला प्रकाश भी होना चाहिए। आज जब हम आधुनिकता और तकनीक के युग में आगे बढ़ रहे हैं, तब भी प्रेमचंद की रचनाएं हमें संवेदनशील बनने, ईमानदारी से जीवन जीने और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपने दायित्व को समझने की प्रेरणा देती है। यही कारण कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका साहित्य समय की सीमाओं से परे है और हर पीढ़ी के लिए समान रूप से प्रेरणादायक बना हुआ है।

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से आज हम श्रोता मुंशी प्रेमचंद को नमन करते हुए ये संकल्प लें कि हम अपने समाज में समानता, न्याय, करुणा और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था श्रोताओं, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता का विकास करना भी है। यही विचार आज भी हमें एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता है। आइए इस महान साहित्यकार की जयंती पर हम पुस्तकों से मित्रता करें, हम सभी पढ़ें, किताबों से दोस्ती करें। रील्स की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय हम किताबें खरीदें, किताबें पढ़ें। हिंदी भाषा और भारतीय साहित्य का सम्मान करें तथा नई पीढ़ी को भी प्रेमचंद की अमूल्य रचनाओं से परिचित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ महान साहित्यकार, युग दृष्टा और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। इसी के साथ ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा करें।

ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी, आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त

समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवंबर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं।

0: श्री खरगे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.6 मीटर।
2: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम, महफिले कव्वाली का। तो चलिए सुनते हैं ये पहली कव्वाली।

आप सुन रहे थे फिल्म कच्चे धागे से कव्वाली नुसरत फतेह अली खान की आवाज में, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था नुसरत फतेह अली खान का।

आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान से कव्वाली अदनान सामी की आवाज में। गीतकार थे कौशल मुनीर और संगीतकार प्रीतम। इसी के साथ हम कार्यक्रम महफिल कव्वाली यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, वक्त है फिल्मों से सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत से ये कार्यक्रम।

हवा के झोंकों में आज भी तुम्हारा एहसास मिलता है, जैसे हर फूल की खुशबू में तुम्हारा नाम खिलता है। आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर द रिवेंज से ये गीत खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। गीतकार थे और संगीतकार नुसरत फतेह अली खान। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि है फिल्म सैयारा से फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है तनिष्क बागची का।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से गीत मोहन कनन और शिल्पा राव की आवाजों में, जिसको लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था प्रीतम का। इसी के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यही संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान

0: निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म

0: और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था। बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की

0: स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens.

0: हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बहीमाना कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता। भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, रुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतल्लिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम अज कम जखीरा अंदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
0: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमूई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीख करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है। मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अदा करने की भी मंजूरी दी है, साथ ही उसने खेलों की कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तिरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को

0: वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानेब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए ताउन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान यह बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तराक का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहीमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात

0: पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्द अमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस

0: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है क्योंकि बालाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से महानदी और उसकी मावन नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांवों, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं जिनसे सैलाब के पानी का इखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातिन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं जिससे भारत के लिए कम से कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ उफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरांदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: करंट अफेयर्स। This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on key bills in Parliament this week. The participants are Aditi Tandon, Senior Journalist, and Prafulla Ketkar, Political Analyst. Moderator is Tina Jha, Journalist.
4: Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I'm Tina Jha. Today we discuss the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Which has been passed by Parliament after detailed deliberations in both houses. The amendments seek to strengthen the integrity of India's public examination system by introducing stricter penalties for those involved in examination malpractices and also by ensuring a faster, time-bound investigation and trial process. The objective is clear: to deter wrongdoing, deliver swift justice and restore the confidence among millions of students whose futures depend on fair and transparent examinations. Prime Minister Narendra Modi has described the passage of the bill as a significant step towards building a more transparent, credible and robust examination system. To discuss these aspects and more, I am joined by Ms. Aditi Tandon, Senior Journalist, and Mr. Praful Ketkar, Editor, Organizer, A warm welcome to both of you, and thank you for joining us on Akashvani. So every examination is built on one fundamental principle that only merit and merit should prevail. But repeated paper leaks did begin to shake that belief among the students, and that's why we saw the anger of students spill onto the streets of different cities across the country. Let me begin with you, Ms. Aditi Tandon. Following the assurance of the Prime Minister now, we've seen a series of measures that the government has announced.

0: इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला

आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से करंट अफेयर्स।

1.96 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम रजनीगंधा का, आपका अपना पसंदीदा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, जहां आपके प्यार भरे खतों में लिखी फरमाइशें बनती हैं सुरीले गीतों की महफिल। मैं हूं आपका मेजबान सागर जकी और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सुनेंगे आपके चुने हुए सदाबहार नगमे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली फरमाइश से। वे खत हमें भेजा है रेखा जी और अनिल जी ने अलीगढ़ से। उनकी फरमाइश है कि हमें ब्लैकमेल फिल्म से गीत सुना दीजिए किशोर कुमार की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत रेखा जी और अनिल जी की फरमाइश।

किशोर कुमार की आवाज में गीत आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल से। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं, संगीत सचमुच दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। आपके पत्र पढ़ते हुए महसूस होता है कि हर गीत किसी ना किसी याद, रिश्ते या एहसास से जुड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। ये खत भेजा है प्रियंका जी ने राजस्थान से। इन्होंने अपने सभी साथियों और परिवार के सदस्यों को ये गीत समर्पित किया और लिखा है कि ये गीत उनकी जिंदगी की कई खूबसूरत यादों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत पामेला चोपड़ा मनप्रीत कौर एवं साथियों की आवाजों में, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था जतिन ललित का। उम्मीद है ये गीत आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमारे श्रोता को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश इस कार्यक्रम का हिस्सा बने तो हमें अपना पत्र जरूर भेजिए। अपने पत्र में अपना नाम, पूरा पता और पसंदीदा गीत लिखना ना भूलें। अब समय आज की तीसरी प्रस्तुति का।

आप सुन रहे थे फिल्म राजा हिंदुस्तानी से ये गीत उदित नारायण की आवाज में, जिसको लिखा था समीर ने और धुन थी नदीम श्रवण की। ये फरमाइश थी दयाल मां कागरा से रिंकू जी की। हमें उम्मीद है रिंकू जी आपने आप ही की फरमाइश जरूर सुनी होगी। तो चलिए सुनते हैं अंतिम फरमाइश कार्यक्रम की और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत

श्रोता हम बता दें, फरमाइश थी प्रीति जी की मेनपुरी से। इस गीत के बारे में बता देते हैं हम, ये गीत जो कि है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से है, किशोर कुमार की आवाज थी, बोल लिखे थे अनजान में और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इसी के साथ ही कार्यक्रम रजनी गंधा यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं देवाशीष चक्रवर्ती से राग रागेश्वरी में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे देवाशीष चक्रवर्ती से राग रागेश्वरी में गिटार वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में ही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

0: गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan.